सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की तिथि 21, तदनुसार 11 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनिए युवावस्था।
1: प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा में चार अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में हमारे जीवन की या किसी भी युवा की युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। युवा किसी भी समाज का भविष्य होते हैं और युवावस्था की युवा शक्ति किसी भी समाज की रीढ़ होती है। प्रत्येक युवाओं को भविष्य का प्रतिनिधि माना जाता है। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। एक युवा का प्रथम दायित्व तो बनता है कि वह अपने राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे, अपने ज्ञान, विवेक तथा सामर्थ्य का लाभ समाज को प्रदान करे। ऊर्जा से परिपूर्ण अपनी युवावस्था को देश की प्रगति के लिए समर्पित करें। किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति समाज को तभी सही दिशा में ले जा सकती है जब वह स्वयं सही दिशा की ओर अग्रसर हो। युवाओं में धैर्य की कमी को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी अनुचित है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए युवाओं के मन में थोड़ी बेचैनी और अधीरता का होना भी आवश्यक है, तभी वे जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में गलतियों से सीखने और स्वयं को सुधारने की क्षमता भी है। हमारे समाज में किसी भी युवा की युवावस्था की आयु

0: 21 से 35 वर्ष तक मानी जाती है। युवावस्था सबके जीवन में आती है और मात्र एक बार आती है। जोश और ऊर्जा भरे बड़े सपने को संजोने के लिए युवावस्था हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है। यही समय है जब हम अपने समग्र विकास के लिए अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं। युवावस्था जीवन की प्रकृति प्रदत्त वह अवधि है जो शक्ति और क्षमता के साथ आगे बढ़ती है, परंतु जीवन पर्यंत शारीरिक और मानसिक रूप से युवा बने रहना या युवावस्था को बनाए रखना एक चुनौती है। आप हम सभी जिस वर्तमान युग में रहते हैं, जहां दिन प्रतिदिन तेजी से बदलती जीवन शैली में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मन से युवा और तन से युवावस्था में बने रहने की चुनौती को स्वीकार करना अति महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारे जीवन के हर दिन के साथ साथ हमारी उम्र तो बढ़ती ही जाती है। यद्यपि हमारे आसपास की दुनिया की तेज गति हमारी उम्र को तेजी से बढ़ाती है, लेकिन यदि हम अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से अपनी युवा शक्ति को जागृत रखेंगे, तभी हम आज की भागती दौड़ती दुनिया में खुशनुमा जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप अपनी बढ़ती उम्र में भी सदैव ऐसे जीवन की कल्पना करें जो युवा सोच और जोश से भरा हो। आप स्वयं को हमेशा उन परिस्थितियों में क्षणों या पलों में रखकर जीवन जिए जैसे कि आप अपनी युवावस्था में रहे थे। क्योंकि हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हमारे मन मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं तथा संरक्षित रहती हैं, अतः अपनी सोच सदा सकारात्मक रखें। नकारात्मक और सकारात्मक सोच का सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। कहते भी हैं, मन युवा तो तन युवा। युवावस्था सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिकता की भी होती है। यदि हम मन से सृजनात्मक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो बढ़ती उम्र में भी हम युवावस्था का ही संचालन करते हैं। युवावस्था ईश्वर का अनमोल वरदान है, इसे धरोहर समझकर सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति के साथ सदा सहयोग करें, अर्थात नियमित योगाभ्यास तथा नियमित दिनचर्या को अपनी बढ़ती उम्र का हिस्सा बना लें। आहार सात्विक और शुद्ध लें। घर में माता पिता को अपने बच्चों के साथ हम उम्र की तरह, अर्थात पिता को पुत्र से तथा माता को पुत्री से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और उनके साथ अपने युवावस्था में बिताए यादगार पलों को साझा करते रहना चाहिए। अपने करियर की प्रगति पर ध्यान देने के साथ साथ आज के युवा को यह भी समझना होगा कि उन्हें समाज को भी कुछ लौटाना है। वर्तमान में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे समाज जूझ रहा है। यह सच है कि हमारा जीवन और परिस्थितियां अपने हिसाब से चलती हैं, फिर भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से युवा बेशक समय न निकाल पाए, लेकिन वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं को जागरूक तो रख ही सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना युवावस्था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसमें आप सुनिए वार्ता संरक्षित खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे देश में जितनी भी कृषि नीतियां बनी हैं वे मुख्यतः ग्रामीण परिस्थितियों के ही अनुकूल बनी हैं और शहरों में खाद्य आपूर्ति पूर्णतः ग्रामीण उत्पादन पर ही निर्भर है। इसमें अब काफी सुधार की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों की खाद्य आपूर्ति के लिए ग्रामीण इलाकों से उन फसलों की आयात तो बिल्कुल ठीक व उचित है जो ज्यादा समय तक खराब न हो, परंतु वैसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनके लिए यदि शहरी क्षेत्रों को ही उनके उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाए तो जल्दी खराब होने वाले कृषि आधारित खाद्य पदार्थ जैसे ताजे फल सब्जियां फूल इत्यादि बहुत कम समय में ही उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को ताजी खाद्य सामग्री मिलेगी और उत्पादों के दाम भी अच्छे मिलेंगे। संरक्षित खेती का मतलब होता है खेती करने का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका जिसके अंतर्गत पौधों को विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी तेज सर्दी तेज हवा तेज प्रकाश की तीव्रता अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि से पौधों का बचाव पौधों को संरक्षण और उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है जो कि उनकी बढ़वार में सहायक होती हैं और इस तरह से उनसे अच्छी गुणवत्ता की और अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती के अंतर्गत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, जैसे पॉली हाउस, सेड

0: नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल, लो टनल इत्यादि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। संरक्षित खेती आज हमारे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और इसे अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि स्वरोजगार भी कर रहे हैं। संरक्षित खेती के अनेक फायदे हैं, जैसे फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि जब पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, टनल हाउस में जब खेती की जाती है तो जाहिर है कि बाहर से कीट पतंगे नहीं आ पाते हैं। जंगली जानवर एवं अन्य पशुओं से फसलों की रक्षा होती है। वातावरण को नियंत्रित करके सभी मौसम में सब्जियों की खेती की जा सकती है। फूलों एवं सब्जियों की नर्सरी तैयार करके पौधों की बिक्री भी कर सकते हैं। अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएं खुले खेतों में 5 से 6 गुना अधिक की जाती है। बाजार मांग एवं अपनी पसंद के अनुसार सब्जियों एवं फसलों का चयन कर सकते हैं। परिनगरीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल और भूमि आदि का सदुपयोग पूर्णतः संभव है। पर्यावरण नियंत्रित संसाधनों के अंतर्गत की जाने वाली संरक्षित खेती से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में लगभग 5 से 12% की वृद्धि होती है। संरक्षित संसाधनों के अंतर्गत पैदा की गई फसल के उत्पादों के मध्य विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इन तकनीकों के तहत फसलों की खेती वर्ष भर की जा सकती है। यह तकनीकी फल, फूल और सब्जियों की फसलों को पैदा करने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। फल, फूल और सब्जियों का इस तकनीकी के माध्यम से ऑफ सीजन उत्पादन करने वाले अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। रोग प्रतिरोधिता और अनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट प्रत्यारोपण से उत्पादन निरंतर लिया जा सकता है। यह तकनीकी बेरोजगार ग्रामीण नवयुवकों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है। संरक्षित संसाधनों के तहत फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीकी से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है जिनकी बाजार में मांग एवं कीमत दोनों ही अधिक होती है। संरक्षित प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी और कारगर है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं, इसमें आपने सुना वार्ता संरक्षित खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश

0: किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्डिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

बूंद बूंद से सागर बनता है और सरगम से सुर सजता है। इसी प्रकार वंदना करने से हमारे भीतर की भक्ति जागती है, और जब भक्ति जागती है तब हमारा मन शुद्ध होता है।

ईश्वर की प्रार्थना में वो शक्ति है जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और हम ये प्रार्थना हमेशा करते हैं कि हे माँ आनंदमय ज्योतिर्मय करुणामय, दूर करो हमारे मन के अंधकार को। ऐसी प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन

0: कि जो कम उम्र की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जो संबंधित प्रॉब्लम होता है वो मासिक धर्म से संबंधित होता है। मासिक धर्म के समय उनके पेट में दर्द का होना, चिड़चिड़ापन होना, ये बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में योग बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। दूसरी, जो अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं, उनमें उम्र के साथ साथ तो शरीर और में और मन में बहुत सारे परिवर्तन होते ही हैं, साथ ही साथ मेनोपोज जैसी समस्या का भी सामना उनको करना पड़ता है, जिसका कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से योग इसमें भी काफी मददगार साबित हो सकता है। और जो बीच की उम्र की महिलाएं हैं, जो कि कामकाजी हैं और साथ ही साथ घर बाहर दोनों का उन पर उत्तरदायित्व तो है, तो वैसे लोगों के लिए भी योग बहुत ही कारगर साबित हो सकता है।
1: अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे रोग हैं, विशेष रोग जो महिलाओं को होते हैं, उससे वो ग्रसित होती हैं, लेकिन योग उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो जरा बताएं।
0: जी, महिलाओं से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे आजकल पीसीओएस, पीसीओडी, ऐसी समस्याएं, मासिक धर्म का रेगुलर नहीं रहना, उसमें उतार चढ़ाव का होना, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर भी महिलाओं में देखने को मिल रहे हैं, जैसे थायराइड की समस्या है। तो महिलाओं में जो विशेषकर जो थायराइड पाए जाते हैं, उसमें उनके साथ साथ मोटापा का भी लक्षण देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो महिलाओं में विशेषकर देखने को मिलती हैं। तो योग के द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन स्थापित करके एक अच्छा जीवन, चाहे वो किसी भी एज की महिला हो, एक अच्छा जीवन निश्चित तौर पर जी सकती हैं।
1: तो कौन कौन से ऐसे आसन या योगासन हो सकते हैं जो महिलाओं को अच्छा जीवन, सहज जीवन, संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? जरा संक्षेप में बताएं।
0: कुछ तो सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए जो कि उम्र के साथ साथ उनके शरीर के लचीलेपन को बनाए रखें, उम्र का प्रभाव उन पर नहीं हो। साथ ही साथ पूर्ण तितली आसन जैसे हो गया, मार्जारी आसन, गोमुखासन, कुछ आगे और पीछे झुकने वाले आसन किए जाने चाहिए। अगर संभव है तो वो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ चक्की चालनासन, उत्तान पादासन, नौकासन, साइकिल चालन, ऐसी कुछ विशेष आसन हैं जो कि महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।
1: जी, कितनी देर करना चाहिए प्रतिदिन? कम से कम कितनी देर योगासन
0: इसमें
1: करना
0: जहां
1: चाहिए?
0: तक समय का ताल्लुक है, तो मैं यही कहूंगी कि आप समय चाहे जितना भी दें, बट रेगुलर रहें। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन 1 घंटे कर लिया और बाकी समय में मैंने बिल्कुल उसको निल कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी होनी चाहिए इसमें।
1: नियमित होना चाहिए। सीमा गुप्ता जी, आपने महिलाओं के लिए योग विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, महिलाओं के लिए योग। भेंट वार्ता का अर्थ ही योग प्रशिक्षक सीमा गुप्ता, और इनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। प्रादेशिक लोक संगीत आप सुन सकेंगे 7:15 पर, और 7:25 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विद्याधर व्यास का शास्त्रीय गायन। राग होगा देवगिरी विलावल।

सोमनाथ अमृत पर्व मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को संबोधन आप सुनेंगे 11:10 से। बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे 12:00 और 12:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर। कानून की बातें ये आप कार्यक्रम सुनेंगे 1:05 पर। इसमें आप सुनेंगे आईपीसी गया बीएनएस आया आपके लिए क्या बदला, और देशगान होगा 1:20 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:30 पर।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे 10 बजे, और 10:30 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी वार्ता प्रिंसिपल।

0: 4:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर और शाम 7 बजे खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर और सोमवार सरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और फिल्म संगीत रात्रि 10:30 पर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400 करोड़ रुपयाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः

0: श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिश्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण

0: जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन में, यानी आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी जानकारी भरी बातें होंगी श्रोताओं, तो आइए सबसे पहले बताएं देश दुनिया के इतिहास में 11 मई क्यों खास है। जी हाँ, विश्व इतिहास में आज की ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं वो जैसे 1812 में आज के ही दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्पेंसर पार्सिवल की हाउस ऑफ कॉमन्स में हत्या हुई थी। 1960 में नाजियों का शिकार करने वाले इस्कराइल के खुफिया एजेंटों ने अर्जेंटीना में नाजियों के शीर्ष अधिकारी एडोल्फ एचमन को पकड़ा था। और 1981 में आज के ही दिन प्रसिद्ध रेगे कलाकार बॉब मार्ले का निधन हुआ था। 11 मई आज के ही दिन यानी 1997 आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और श्रोताओं, हम लोग बात करें क्या खास है देश दुनिया के इतिहास के दिन में क्या खास हुआ था, तो बताएं आज किनका जन्म दिवस है। जी हाँ, मृणालिनी साराभाई यानी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना का जन्म 11 मई को हुआ था। सहादत हसन मंटो मशहूर उर्दू लेखक और नाटककार का जन्म आज ही के दिन यानी 11 मई 1912 में हुआ था। आबिद अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज के ही दिन आबिदा सुल्तान यानी भोपाल सियासत की

राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट का निधन हुआ था। और सबसे अच्छी बात श्रोताओ, आज आपको बताते हैं, आज खास इसलिए है कि आज हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज हम लोग मनाते हैं, क्योंकि भारत में हर साल 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना जाता है। इस दिन भारत के 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल थी। इस सफलता ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया। तो श्रोताओं, जानकारी अभी ढेर सारी है, सुनते हैं इस गाने के बाद।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे क्या खास है आज के दिन। जी हाँ, आज हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है ताकि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको उजागर किया जा सके और छात्रों को करियर के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आज के ही दिन पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति घोषित किया। तब से आज के ही दिन यह दिवस मनाया जाता है ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और अन्य सभी लोगों की उपलब्धियों को याद किया जा सके। ये दिवस उत्सव है भारत की वैज्ञानिक खोज का। तो श्रोताओं, इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया।
1: अरे बिन पावन का

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक लोक संगीत। कलाकार थे प्रहलाद सिंह टिपानिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विद्याधर व्यास का शास्त्रीय गायन। राग है देवगिरी विलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विद्याधर व्यास का शास्त्रीय गायन। राग था देवगिरी विलावल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
5: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
4: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।

0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
1: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
1: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईते ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-04-81, 011-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर

0: केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएससी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की जर मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वजीर आजम ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वजीर आजम ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुर्दनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज

0: अमरनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तसव्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदु किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिक तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफ बरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्ले ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की काउंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कल हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद हो गई, जिसके बाद अब मगरबी बंगाल की नई सरकार अपनी इंतजामिया का सफर शुरू करने को तैयार है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में अपनी पहली काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। इम्कान है कि मीटिंग में उन 5 नए वजीरों के कलमदान मुख्तस किए जाएं, जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साज़रकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महाज की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस सरजवान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज़ को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलएज को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत

0: को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इनेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दो गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खत्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मनसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताज़ा तरीन तजवीज़ के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाज़े को ख़त्म करना है अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाज़े के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है जो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुज़ाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खीरों को ख़त्म करने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया जो मुज़ाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम ज़खीरे पर करीबी नजर रख रहा है। न्यूज डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के AFC एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیراعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عوام پیٹرول، ڈیزل اور گیس کا استعمال کفایت شعاری سے کریں۔

0: वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला और टीवीके के सरबरा विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरका तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, टीवीके चीफ के अलावा नौ दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबीना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबीना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खास खबर, एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की ज़र मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे, वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी,
7: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
9: नमस्कार, ये

आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न

0: जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
0: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हुर्मुज जलडबरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बाद भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया में पेट्रोल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए आज से सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय से इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी लेने और रिमाइंडर भेजने तथा प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिन के अंदर उनका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि जमीन निबंधन कराने के समय में आवेदकों को 13 प्रकार की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जमीन की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण निबंधन के बाद विवाद नहीं हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट तैयार की गई है, जिसके जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राज्य की सभी चीनी मिलों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर सर्विस CHCS संचालित करना होगा। वर्तमान में सिर्फ 3 चीनी मिलों ने CHCS स्थापित किए हैं। गन्ने की खेती के रकबा विस्तार के उद्देश्य से चीनी मिलों को CHCS की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार कृषि विभाग और जीविका द्वारा स्थापित CHCS में गन्ना फसल से संबंधित विशेष कृषि यंत्रों की कमी भी चिन्हित की गई है। गन्ना विभाग के अधिकारियों और चीनी मिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गन्ना संबंधित कृषि यंत्रों की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही इन सूचनाओं के आधार पर शीघ्र समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में मॉनसून से पहले 45,000 पुल पुलियों की जांच की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार जांच का निर्देश कार्यपालक अभियंता

0: को दिया गया है। इस विशेष निगरानी का अभियान इस विशेष निगरानी अभियान में अनियमितता या गड़बड़ी करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू पीएनजी की कीमत 50 पैसे बढ़कर 49.94 रुपये हो गई है, वहीं व्यावसायिक पीएनजी की कीमत बढ़कर 93.27 रुपये प्रति SCM हो गई है। औद्योगिक पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इधर सीएनजी की दर 1 रुपये बढ़कर 89.90 रुपये प्रति किलो हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
2: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। श्री शाह ने संभावित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से देश के केंद्र शासित और राज्य सरकारों को बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल बिहार से बेंगलुरु के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 14 मई से 12 जुलाई के बीच सहरसा और यशवंतपुर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पूर्णिया कोट और सहरसा से आनंद विहार के लिए चल रही ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन के पास स्थित पश्चिम संपार फाटक को बंद कर सो जाने वाले गेटमैन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एसटीएफ की टीम ने बक्सर जिले से एक व्यक्ति विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी निवासी विशाल पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और पीए हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने विशाल की गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया है। समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहा है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र शिवहर पहुंचने पर डॉ. श्वेता ने यह बात कही। पूर्वी चंपारण जिले में GRP ने तस्करी के लिए भागलपुर ले जाए जा रहे 21 बच्चों को मुक्त कराया है। रेल पुलिस थानाध्यक्ष भरत प्रसाद ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के BD चौक के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 41

0: इस लीटर नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात रायपुर में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दिन के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात का प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के तबादले पर लिखा है, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अफसरों को नई जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में निगरानी कैडर समाप्त, बिहार पुलिस में समायोजित होंगे इसके अधिकारी। प्रभात खबर ने नेपाल सरकार की ओर से जारी एक आदेश पर लिखा है, नेपाल जाना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य, सीमा पर बढ़ी चौकसी। दैनिक जागरण लिखता है, तमिलनाडु में विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल बहाया, देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ी। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार के सभी जिलों में पीपीपी मोड पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन, हर जिले से पटना के लिए चलेगी सरकारी बसें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनिए उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

हमारे सामीन कराम को उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की जानिब से सुबह का पुरनूर सलाम और आदाब पेश है। मैं शगुफ्ता आपका आज की अंजुमन में इस्तकबाल करती हूँ। सामीन, कबल इसके कि हम आज की अंजुमन का आगाज़ करें, आइए समाप्त करते हैं एक प्यारी सी गज़ल पंकज उधास की आवाज़ में सजी हुई है।

दोबारा से अंजुमन में आप सामीन का खैर मकदम है और शगुफ्ता हाजिर है आज की अंजुमन के साथ। सामीन, आज की तारीख हमारे मुल्क के एजाज में चार चांद लगाती है। दो अजीम शख्सियतों का 11 मई को मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी पर आना मुल्क के लिए काबिले फख्र बात है। जब बरतानवी हुकूमत ने मुल्क को गुलाम बना रखा था और मुल्क आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा था, उसी दौरान 11 मई 1888 को बिजनौर

उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी वकील, मुजाहिद आज़ादी और सिफारतकार शख्सियत मोहम्मद आसिफ अली की पैदाइश हुई। उनकी आला तालीम लंदन में मुकम्मल हुई और हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने मुल्क की राजधानी दिल्ली में वकालत शुरू की। जब एनी बेसेंट के होम रूल तहरीक में उन्होंने शिरकत की, तब से वह आज़ादी की तहरीक में जुड़ गए और मुल्क की खिदमात अंजाम देते रहे। सामीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, आइए एक प्यारी सी गजल से अंजुमन को मुअत्तर करते हैं। समाअत कीजिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सजी ये खूबसूरत सी गजल।

0: ना सिर्फ आज़ादी तहरीक में सरगर्म रहे बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सफ़ीर बनाए गए और अमेरिका यूएसए में सफ़ीर बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। साथ ही वह उड़ीसा के गवर्नर बने और स्विट्ज़रलैंड में वज़ीर के तौर पर भी उन्होंने खदमात अंजाम दी। सामने इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है आज की ख़ास पेशकश का। हम अंजुमन में आपके लिए शायरों की महफिल लेकर आए हैं। आइए शायर खालिक हुसैन परदेसी की निज़ामत में सजने वाली महफिल सुखन की जानेब चलते हैं। शिरकत करने वाले शोराए कराम हैं मोहम्मद अता हुसैन अंसारी और प्रेम किरण।
1: मोहतरम हजरात, आज के इस महफिल सुखन में तमाम शोराए कराम का खैर मकदम है। इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब और प्रेम किरण और नाचीज़ खालिक हुसैन परदेसी। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी से गुजारिश करता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि यह सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था, बचा लिया तेरे खुशबू के फ़र्क ने वरना मैं तेरे वहम में तुझसे लिपटने वाला था। मोहतरम जनाब अता आबदी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल के चंद अशआर समात फरमाएं। मतला है, कब है अपना होने वाला, कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला।
1: वाह,
2: कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला। और कब तक यारो वही कहानी, एक था जादू टोने वाला। कब तक यारो वही कहानी, एक था जादू टोने वाला। और वक्त के आगे झुकता लेकिन वक्त है किसका होने वाला।
1: वाह वाह,
2: वक्त है किसका होने वाला। और कौन है दिल के अरमानों को सबकी खातिर ढोने वाला, सबकी खातिर ढोने वाला। और हक्का बक्का तन्हा सा है बीज वफा के बोने वाला,
1: क्या बात,
2: बीज वफा के बोने वाला। और अशकों से महरूम हुआ है, अशकों से महरूम हुआ है, सबकी खातिर रोने वाला, सबकी खातिर रोने वाला। और दाएं बाएं गिर जाता है, दाएं बाएं गिर जाता है, बैठे बैठे सोने वाला, बैठे बैठे सोने वाला। दाएं बाएं गिर जाता है, बैठे बैठे सोने वाला। और अपना होना खेल नहीं है, अपना होना खेल नहीं है, कौन है अपना होने वाला, कौन है अपना होने वाला। और दिल है सब पर बोझ मगर दिल, दिल है सब पर बोझ मगर दिल, बोझ है सबका ढोने वाला, बोझ है सबका ढोने वाला। और आखिरी शेर कि सबने दुनिया पाई लेकिन, सबने दुनिया पाई लेकिन, सब है दुनिया खोने वाला। और कब है अपना होने वाला, वक्त आने पर सोने वाला। एक दूसरी गज़ल के चंद अशआर, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, दरिया को तशनगी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए, इस दिल को बेरुखी के हवाले से सोचिए। और एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, एक उम्र पर भी उसको न पहचान पाए हम, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए, दुनिया को अजनबी के हवाले से सोचिए। और एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा, एक एक लम्हा नफ्स की हुरमत बताएगा। हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए, हर गम को जिंदगी के हवाले से सोचिए। और दानिशवरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, दानिशवरों के हम भी तो मातूब हैं हमें, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए, पिंदारे आगही के हवाले से सोचिए। और दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, दावा फरिश्ता होने का सबको भले ही हो, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए, हमको बस आदमी के हवाले से सोचिए। और सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, सब कुछ है इस जहान में फिर भी यहाँ पे आप, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए, इस घर को बेघरी के हवाले से सोचिए। और मेरा चिराग शहरे खमोशा में जल उठा,
1: क्या बात,
2: मेरा चिराग शहरे खमोशा में जल उठा, जख्मों को रोशनी के हवाले से सोचिए, जख्मों को रोशनी के हवाले से।

0: सोचिए, और कुछ फूल हमने कर दिए हैं दस्त के सुपुर्द,
1: क्या बात है, कुछ
0: कुछ
1: फूल
0: फूल हमने कर दिए हैं
1: दस्त के
0: दस्त
1: सुपुर्द।
0: के सुपुर्द, खुशबू को बेबसी के हवाले से
1: हवाले से
0: सोचिए,
1: सोचिए, क्या बात है,
0: खुशबू को
1: बेबसी
0: बेबसी के हवाले से
1: हवाले, बहुत
0: सोचिए।
1: खूब बहुत खूब,
0: और मक्ता देखें
1: इनायत
0: कि
1: राम।
0: माना अता से आपका रिश्ता नहीं मगर,
1: हाँ,
0: माना
1: माना
0: अता
1: अता
0: से
1: से आपका
0: आपका रिश्ता
1: रिश्ता
0: नहीं
1: नहीं मगर,
0: मगर, आप उसको शायरी के हवाले से
1: हवाले से
0: सोचिए।
1: सोचिए,
0: क्या
1: क्या
0: माना
1: बात
0: अता से आपका रिश्ता नहीं मगर,
1: है,
0: आप उसको
1: उसको
0: शायरी
1: शायरी
0: के
1: हवाले से
0: हवाले से
1: सोचिए,
0: सोचिए।
1: बहुत अच्छा,
0: अच्छा,
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया। एक गजल और मतला है, साथ रखती है उम्र भर की कशिश,
1: साथ रखती
0: साथ
1: है
0: रखती है
1: उम्र भर की
0: उम्र
1: कशिश,
0: भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश,
1: वाह बात
0: है अजब हुस्ने मोतबर की
1: की
0: कशिश,
1: कशिश,
0: साथ रखती है उम्र भर की कशिश, और ज़िंदगी मुझसे मिलने वाली है, ज़िंदगी
1: मुझसे मिलने
0: मुझसे
1: वाली है,
0: मिलने वाली है, ज़िंदगी मुझसे मिलने वाली है, ज़िंदा रखे है इस ख़बर की कशिश,
1: क्या
0: वाह,
1: बात है,
0: ज़िंदगी मुझसे मिलने वाली है,
1: जिंदा
0: ज़िंदा
1: रखे है,
0: रखे है इस ख़बर की कशिश, और अपने मरकज़ पे रह सके कब हम,
1: अपने
0: अपने
1: मरकज
0: मरकज़ पे
1: कब
0: रह
1: रह
0: सके
1: सके,
0: कब हम,
1: वाह
0: हाय अफसोस इधर उधर की कशिश,
1: वाह
0: हाय अफसोस इधर उधर
1: वाह
0: की कशिश,
1: वाह
0: और ये
1: वाह
0: शेर, कैसे भूलें तिलिस्म मस्नूई,
1: वाह,
0: कैसे भूलें
1: तिलिस्म मसनू,
0: तिलिस्म मस्नूई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश,
1: वाह बात
0: कैसे
1: है, क्या
0: भूलें तिलिस्म मस्नूई, हमने देखी है बेहुनर की कशिश,
1: कशिश,
0: और ये शेर के शाख दर शाख फूल फल पत्ते,
1: वाह
0: शाख
1: दर
0: दर
1: शाख
0: शाख
1: फूल,
0: फूल फल पत्ते,
1: वाह वाह वाह
0: खूब है खूब ये शजर की कशिश,
1: वाह,
0: क्या
1: खूब
0: बात,
1: है
0: खूब
1: खूब ये,
0: है
1: क्या
0: खूब ये शजर की कशिश,
1: बात, वाह वाह,
0: साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश,
1: वाह
0: और ये शेर कि यूं ही दस्ते दुआ दराज रहे,
1: क्या बात है, यूं
0: यूं
1: ही यूं ही
0: ही
1: दस्ते द्वार,
0: दस्ते दुआ दराज रहे,
1: वाह
0: यूं ही दिल में रहे असर की कशिश,
1: वाह
0: यूं
1: बात
0: ही दिल में रहे असर
1: असर की,
0: की
1: वाह वाह
0: कशिश,
1: वाह वाह वाह,
0: और ये शेर कि अब कोई गम कहाँ है मंजिल का, अब कोई गम
1: कहाँ है
0: कहाँ
1: मंजिल,
0: है मंजिल का, है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश,
1: वाह बात
0: है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, अब कोई गम कहाँ है मंजिल का,
1: मंजिल का,
0: है कुछ ऐसी ही रह गुजर की कशिश, और ये शेर कि जख्म अच्छा ना हो तो बेहतर है,
1: वाह जख्म
0: जख्म
1: अच्छा
0: अच्छा ना हो
1: तो
0: तो
1: बेहतर,
0: बेहतर है, कह रही है ये चारा घर की कशिश,
1: वाह वाह
0: जख्म
1: वाह,
0: अच्छा ना
1: अच्छा ना
0: हो तो
1: हो तो
0: बेहतर
1: बेहतर, क्या
0: है,
1: बात है, क्या
0: कह रही
1: कशिश
0: है ये
1: है,
0: चारा घर की कशिश,
1: वाह
0: कह
1: जख्म
0: रही
1: अच्छा,
0: है ये चारा घर की कशिश, और मक्ता की जिंदगी हरकतो अमल से है,
1: क्या बात है,
0: जिंदगी
1: हरकतो अमल
0: हरकतो
1: से,
0: अमल से है, मुझसे पूछो अता सफर की कशिश,
1: वाह क्या बात,
0: मुझसे पूछो अता सफर की कशिश, जिंदगी हरकतो अमल से है, मुझसे पूछो अता सफर की कशिश, साथ रखती है उम्र भर की कशिश, है अजब हुस्ने मोतबर की कशिश।
1: क्या बात है, वाह
0: एक गजल चंदाशार
1: जी जय इनायत,
0: मतला है, किया है मौजों ने यूं किनारा,
1: किया है मौजों
0: किया
1: ने यूं
0: है
1: किनारा,
0: मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं,
1: क्या बात, क्या
0: किया
1: बात,
0: है मौजों ने यूं किनारा, किनारे
1: किनारे
0: सहमे
1: सहमे
0: हुए
1: हुए
0: हैं
1: पड़े,
0: पड़े हैं, न कोई हरकत न कोई हलचल, नज़ारे सहमे हुए पड़े हैं,
1: क्या बात, क्या बात,
0: और ये शेर की उजाला मांगे का कोई लेके उछल रहा है बहरसू ऐसे, उजाला मांगे का कोई लेके
1: उछल
0: उछल
1: रहा
0: रहा है बहरसू ऐसे, हमारे शमसो कमर हैं हैरा,
1: है,
0: सितारे सहमे हुए पड़े हैं,
1: क्या बात,
0: सितारे सहमे हुए पड़े हैं, और जहाँ ने इमकान हसीन करके तेरी नज़र पे यकीन करके,
1: वाह
0: जहाँ
1: वाह,
0: ने इमकान
1: हसीन
0: हसीन
1: करके
0: करके तेरी
1: तेरी
0: नज़र
1: नजर,
0: पे यकीन करके,
1: वाह
0: है दिल के मारों का हाल ऐसा, बेचारे सहमे हुए पड़े
1: पड़े
0: हैं,
1: हैं, वाह वाह वाह वाह,
0: बेचारे सहमे हुए पड़े हैं, न जाने सहरा में ऐसा क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला,
1: क्या बात है, वाह वाह
0: न
1: वाह,
0: जाने
1: सहरा में
0: सहरा
1: ऐसा
0: में
1: क्या
0: ऐसा
1: था,
0: क्या था कि फूल चेहरा चमन से निकला, सिसक रही हैं सभी पतंगे, गुब्बारे सहमे हुए पड़े हैं,
1: वाह वाह वाह
0: गुब्बारे
1: वाह वाह
0: सहमे हुए
1: वाह
0: पड़े
1: वाह वाह
0: हैं,
1: वाह,
0: और ये शेर की अजब है जहनों की गुम रही भी, अजब है
1: सहनों की गुम
0: जहनों की
1: रही,
0: गुम रही भी, फजा में हर

0: है तीरगी
1: क्या बात है,
0: फजा में, हरसू है तीरगी सी,
1: तीरगिसी।
0: एक काम इंसान का जिक्र ही क्या,
1: हाँ
0: इदारे सहमे
1: मैं
0: हुए
1: हुए
0: पड़े
1: पड़े हैं।
0: हैं, एक
1: वाह
0: काम इंसान का जिक्र ही क्या,
1: वाह
0: इदारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: आखिरी शेर के, खिरत नमूदे सबब है हमदम,
1: वाह
0: जुनू पे तारी जमूद पे हम,
1: क्या बात है, वाह
0: खिरत नमूदे सबब है हमदम, जुनू पे तारी जमूद पे हम, और
1: वाह
0: दिलों के शोले बुझे हुए हैं, शरारे सहमे हुए पड़े
1: वाह
0: हैं।
1: वाह बात है, वाह वाह
0: मक्ता
1: वाह
0: देखेंगे कि
1: जी अनायत।
0: अता जो गांव के खेत में थे, अता
1: जो
0: जो
1: गांव के
0: गांव के खेत में थे, अता चमकते जो रेत में थे, सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: सुना है शहरे शरार में अब वो पारे सहमे हुए पड़े हैं, किया है मौजों ने यूं किनारा, किनारे सहमे हुए पड़े हैं।
1: वाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बढ़िया। ये थे जनाब अता हुसैन अंसारी साहब जी, अता आबदी आपके सामने अभी अपनी खूबसूरत गजल पेश कर रहे थे। और अब मैं मोहतरम प्रेम किरण से, मैं इन चार मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, जो दोस्ती है अभी कल वही मोहब्बत थी।
2: क्या बात
1: वो बात सोच कर मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या ज़रूरत थी।
2: क्या बात है,
1: जनाब मोहतरम प्रेम किरण साहब से गुजारिश है कि वो अपनी गजल से नवाजें।
2: गजल का मतलब
1: जी
2: दीक्षा
1: अनायत,
2: है कि अभी तलक तो थी
0: अभी तलक तो थी,
2: दोनों के दरमियां बातें,
1: क्या बात है, वाह, अभी तलक तो थी दोनों के दर
2: अभी
1: में,
2: तलक तो थी
1: दोनों के दर में अब,
2: दोनों के दरमियां बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां वहां
1: वहां बात है,
2: बातें।
1: वाह
2: क्या
1: वाह,
0: बात है, जो हद से पहुंची
2: अभी तलक तो थी दोनों
1: के
2: के
1: दरमियां
2: दरमियां
1: बातें,
2: बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहां
1: वहां
2: वहां बातें।
1: बातें, जी,
2: और शेर देखिए कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं,
1: हाँ,
2: क्या
1: हम
2: बात
1: एक छत के
2: कि
1: तले
2: हम एक छत के तले अजनबी
1: अजनबी से
2: अजनबी
1: रहते
2: से
1: हैं,
2: रहते हैं, किसी से कोई भी करता है अब कहाँ
1: कहाँ
2: बातें,
1: बात है,
2: क्या
1: वाह
2: कि
1: वाह,
2: किसी से कोई भी
0: करता है
2: करता
1: कहाँ
2: है
1: बातें,
2: अब कहाँ बातें।
0: वाह बहुत खूब,
2: और ये शेर देखिए कि हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर,
1: हम अपनी अपनी आना पर,
2: हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर
0: वाह
2: सुलझ न पाएंगी दोनों के दरमियां
1: क्या वाह,
2: बातें,
0: क्या बात है,
2: कि सुलझ न पाएंगी
1: पाएंगी दोनों के,
2: दोनों के दरमियां बातें, और हमें ही ढूंढना है मसालों का हल कोई,
1: आह, हमें ही ढूंढना
2: हमें
1: है
2: ही ढूंढना है
1: मसालों
2: मसालों का हल
1: हल कोई,
2: कोई, चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें,
1: क्या बात है,
2: के
1: क्या बात है,
2: चलो के तोड़ के
1: करते
2: करते
1: हैं
2: हैं
1: चुप्पियां
2: चुप्पियां
1: बातें,
2: बातें।
1: वाह वाह
2: और
1: वाह,
2: ये शेर बतौर खास
1: देना
2: के,
1: ही,
2: तमाम रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं,
1: आह, तमाम रिश्ते
2: तमाम
1: लहू
2: रिश्ते लहू
1: के
2: के
1: बिखरते,
2: बिखरते जाते हैं,
1: वाह
2: वहीं के हो गए सब बन गई जहां
1: क्या बात
2: बातें,
1: है, क्या
2: वाह
1: बात है,
2: कि
1: क्या
2: वहीं
1: बात,
2: के हो गए सब
0: बन गई
2: बन
0: जहां
2: गई
1: बातें
2: जहां बातें। और ये
1: वाकई,
2: शेर, शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता,
1: शहर के बाद घरों में
2: शहर
1: कोई,
2: के बाद
1: घरों में
2: घरों
1: कोई,
2: में कोई नहीं मिलता, दरों पे करती हैं दिन में उदासियां
1: क्या बात,
2: बातें,
1: वाह
2: के
1: वाह,
2: दरों पे करती हैं
1: दिन
2: दिन
1: में
2: में
1: उदासियां
2: उदासियां
1: बातें,
2: बातें। और
1: बहुत
2: ये
1: खूब,
2: आखिरी शेर के, नए जमाने के इंसान मशीन जैसे हैं,
1: क्या बात है,
2: कि नए जमाने के इंसान
1: मशीन जैसे हैं,
2: मशीन जैसे हैं,
1: बिल्कुल,
2: हमारे वक्त की कुछ और थी मियाँ
0: क्या
2: बातें,
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: कि
1: वाह,
2: हमारे वक्त की
1: कुछ और थी मियां
2: कुछ
1: बात,
2: और
1: थी
2: थी
1: मियां
2: मियाँ
1: मियां
2: बातें। और
1: बातें,
2: ये शेर एक और गजल का मतलब देखिए
1: ना जो जो,
2: कि नफरत ही रह गई है
0: जी
2: मोहब्बत चली गई,
1: क्या बात है, नफरत ही रह गई
2: कि नफरत ही रह गई है
1: मोहब्बत चली गई,
2: मोहब्बत चली गई, घर से हमारे रूठ के बरकत चली,
1: आह
2: क्या
1: हा हा
2: बात,
1: हा, वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह,
1: वाह,
2: कि नफरत ही रह गई है
0: जी
2: मोहब्बत
1: मोहब्बत,
2: मोहब्बत
1: मोहब्बत
2: चली गई,
0: वाकई
2: घर से हमारे रूठ के
0: बरकत
2: बरकत
1: चली
2: चली
1: गई,
2: गई।
1: वाह
2: और ये शेर कि हम भी खुशी के नाज उठाते कहाँ तलक,
1: आह,
2: हम
1: हम
2: भी
1: भी
2: कि
1: खुशी
2: हम
1: के
2: भी खुशी के नाज
1: उठाते कहाँ तक,
2: उठाते कहाँ तलक, अच्छा हुआ कि घर से मुसीबत चली
1: वाह
2: गई,
1: वाह वाह वाह वाह,
2: कि अच्छा हुआ
1: कि
2: कि
1: घर से
2: घर से
1: मुसीबत चली
2: मुसीबत
1: गई,
2: चली गई।
1: वाह,
2: और ये शेर के, दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए, कि दो भाइयों
0: के
2: के
1: बीच
2: बीच
1: की
2: की
0: नफरत न
2: नफरत
1: पूछिए,
2: न पूछिए, घर से निकल के बाहर

0: आत अदालत चली।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: हुआ कि दो भाइयों के बीच की नफरत न पूछिए,
1: पूछिए। घर से
0: घर
1: निकल के
0: से
1: बाहर, बहुत
0: निकल के
1: खूबसूरत शेर है
0: बाद
1: भाई, वाह वाह,
0: अदालत
1: पहुंच
0: अदालत
1: गई,
0: चली गई।
1: बहुत अच्छा।
0: और ये शेर की, अच्छा था हम गरीब थे,
1: जी,
0: इंसानियत तो थी,
1: ओह
0: क्या बात
1: वाह,
0: है कि अच्छा था हम गरीब थे,
1: इंसानियत तो थी,
0: इंसानियत तो
1: वाह
0: थी,
1: वाह
0: गुर्बत से जान छूटी, शराफत चली।
1: वाह,
0: क्या
1: फज
0: बात है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह,
0: बात,
1: के
0: गुर्बत से जान छूटी,
1: शराफत चली गई।
0: शराफत चली गई।
1: वाह
0: और ये शेर के दौलत का ये गुरूर भी कितना अजीब है,
1: वाह, दौलत का ये
0: कि
1: गुरूर
0: दौलत का ये गुरूर भी
1: कितना,
0: कितना अजीब है,
1: वाह
0: दस्तार बच गई तो रियासत चली।
1: वाह
0: क्या बात
1: वाह
0: है,
1: वाह,
0: कि
1: दस्तार बच गई
0: दस्तार बच गई तो
1: तो रियासत
0: रियासत
1: चली
0: चली
1: गई।
0: गई। और ये इसमें एक गजल का शेर हो गया है
1: जी,
0: कि खंजर चला न खून का दरिया बहा कहीं,
1: खंजर चला
0: खंजर चला
1: नखून का
0: न
1: दरिया,
0: खून का दरिया बहा कोई, नजरों से कत्ल करके कयामत चली। क्या बात
1: वाह
0: है, कि
1: वाह वाह,
0: नजरों से कत्ल
1: करके
0: करके
1: कयामत चली गई।
0: कयामत चली गई। और ये आखिरी शेर की आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी किस तरह,
1: आवाज अपने
0: कि
1: दिल की,
0: आवाज अपने दिल की मैं सुनता भी
1: वाह
0: किस तरह,
1: वाह,
0: दुनिया के शोरगुल में समा चली
1: क्या
0: गई,
1: बात है,
0: कि
1: वाह वाह,
0: दुनिया के शोरगुल में
1: समाज चली
0: समा
1: गई,
0: चली गई।
1: वाह,
0: और क्या,
1: क्या
0: हाँ,
1: गर्व है। जी
0: अभी एक रोमानी गजल
1: जी हाँ,
0: सुनिए
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल, अरशाद,
0: यहीं पास कोई नदी गा रही है, यहीं
1: अच्छा,
0: पास
1: यहीं
0: कोई
1: पास
0: नदी गा
1: कोई
0: रही
1: नदी
0: है,
1: गा,
0: यहीं पास कोई नदी गा रही है, मोहब्बत की ठंडी हवा आ रही है। क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह, बहुत खूबसूरत, वाह,
0: यहीं पास कोई नदी गा रही है,
1: मोहब्बत की ठंडी
0: मोहब्बत की
1: हवा,
0: ठंडी हवा
1: हवा
0: आ
1: चाहिए,
0: रही
1: अच्छा
0: है,
1: है भाई।
0: और गजब की कशिश है सदाओं में उसकी,
1: गजब की कशिश है
0: गजब की कशिश है सदाओं
1: सदाओं
0: में
1: में उसकी,
0: उसकी, मुझे दूर मुझसे लिए जा रही है।
1: क्या
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह वाह,
0: है,
1: मुझे दूर मुझसे लिए जा रही है,
0: गजब की कशिश है सदाओं में उसकी,
1: वाह,
0: मुझे दूर मुझसे
1: लिए
0: लिए
1: जा
0: जा
1: रही,
0: रही है, और मैं देखूं कि उसको सुनूं शब ढले तक,
1: मैं देखूं कि
0: मैं
1: उसको,
0: देखूं कि उसको सुनूं शब ढले तक, सरापा गजल खुद गजल गा रही।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात, कि
1: वाह,
0: मैं देखूं
1: के
0: कि
1: सुनूं,
0: उसको सुनूं शब ढले तक,
1: क्या बात है,
0: सरापा गजल खुद गजल
1: गजल
0: गा
1: गा रही
0: रही
1: है,
0: है,
1: क्या
0: और
1: बात
0: सितारों की महफिल उसी से है रोशन,
1: है, सितारों की
0: सितारों की
1: महफिल
0: महफिल
1: उसी से है
0: उसी से है
1: रोशन,
0: रोशन, वही नूर पर नूर बरसा रही।
1: क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह,
1: वही
0: कि
1: नूर से नूर, वही नूर है
0: सितारों की
1: नूर,
0: महफिल उसी से है रोशन,
1: वही
0: वही
1: नूर
0: नूर पर नूर
1: नूर बरसा
0: बरसा
1: रही।
0: रही है, और मैं खुद को संभालूं कि बेताब दिल को,
1: मैं खुद को
0: मैं खुद
1: संभालूं,
0: को संभालूं कि बेताब दिल को, किसी
1: जी,
0: ने कहा जिंदगी जा रही है।
1: वाह
0: क्या बात
1: वाह
0: है, कि
1: वाह
0: मैं
1: वाह,
0: खुद को संभालूं
1: क्या
0: कि
1: बात है,
0: बेताब दिल को,
1: वाह,
0: किसी ने कहा जिंदगी
1: जिंदगी
0: जा
1: जा रही
0: रही
1: है,
0: है। और ये शेर आखिरी,
1: जी
0: कि
1: हाँ,
0: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई है,
1: वाह, मोहब्बत में कैसी
0: मोहब्बत
1: सियासत
0: के,
1: हुई है,
0: मोहब्बत में कैसी सियासत हुई ये, कहीं की थी डोली कहीं जा रही है,
1: क्या बात है, क्या
0: कि
1: बात है,
0: कहीं की थी
1: डोली
0: डोली
1: कहीं
0: कहीं
1: जा
0: जा
1: रही
0: रही
1: है,
0: है, और यहीं पास कोई नदी गा रही है,
1: जी,
0: मोहब्बत की ठंडी
1: हवा
0: हवा आ
1: आ
0: रही
1: रही
0: है।
1: है, वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात है,
1: बहुत ही
0: बहुत
1: खूबसूरत
0: खूबसूरत
1: शेर
0: जी।
1: जनाब, प्रेम किरण, आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गजल पेश की। वाकई वो कहते हैं कि उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, क्या बात, और वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया जिसे तराशा था हमने भी एक ज़माने से।
0: क्या बात,
1: अब मैं खालिक हुसैन परदेसी, चंद एशार गज़ल के पेश कर रहा हूँ।
0: नायक।

रवां। और ये शेर देखेंगे कि न गाजा है न लाली है न बिंदिया है न काजल है।

तुम्हारा बात करना रूठ जाना मुस्कुरा देना, तुम्हारा बात

0: और ये मक्ता पेश है
1: अच्छा
0: कि हजारों गम है अपनी जिंदगी में फिर भी परदेसी,
1: वाह
0: हजारों गम है
1: अपनी
0: अपनी
1: जिंदगी में
0: जिंदगी में फिर भी पर

0: ओहे।
1: वाह,
0: और एक दूसरी गजल का मतलब ये पेश
1: अच्छा
0: कर रहा हूं
1: अच्छा
0: मैं जी, देखेंगे कि
1: इनायत हो।
0: हो इजाजत तो कदम अपना बढ़ाऊं मैं भी।
1: वाह,

0: तो। और इस गजल का आखिरी शेर मक्ता से पहले
1: जी
0: कि वादे वसल अगर हो तो हसी लम्हों का, वादे वसल अगर

0: में कोई ख्वाब
1: सजाऊं मैं भी।
0: सजाऊं
1: क्या
0: मैं
1: बात
0: भी,
1: जी,
0: अपनी आंखों में
1: वाह
0: कोई
1: वाह वाह वाह
0: ख्वाब
1: वाह
0: सजाऊं मैं भी। और मक्ता पेश है,

0: भी
1: वाह
0: और हजरात, इसी गजल के साथ मैं अब इस महफिल सुखन का अख्तिताम करता हूँ। आज के इस महफिल सुखन में जो शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद थे, उनमें थे जनाब मोहम्मद अता हुसैन अंसारी उर्फ अता आबदी साहब, दूसरे शायर जनाब प्रेम किरण साहब जो पटना से तशरीफ लाया, और मैं खाकसार खालिक हुसैन परदेसी जो आज की निजामत कर रहे थे, और इसके साथ ही महफिल सुखन का यह स्टूडियो मुशायरा अख्तिताम पज़ीर हुआ।
2: सामिन, जैसा कि मैंने आगाज़ अंजुमन में बताया था कि आज की तारीख एक बड़ा मकाम रखती है, क्योंकि एक बेबाक और हकीकत पसंद उर्दू अदब के सबसे मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की पैदाइश भी आज की तारीख 11 मई 1912 में पंजाब के लुधियाना ज़िला में हुई। अपनी तालीम का आगाज़ उन्होंने अमृतसर से करते हुए मुंबई और लाहौर में फिल्मी व अदबी ज़िंदगी गुजारी। सामिन, सआदत हसन मंटो पर हमारी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू रफ्तार देगी, लेकिन फिलहाल आइए एक गजल से अंजुमन को महकाते हैं। समाअत कीजिए खूबसूरत सी गजल।

एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन के साथ। सादत हसन मंटो की जिंदगी में नया मोड़ अब्दुल बारी अलीक से मुलाकात के बाद आया। उनसे मुलाकात के बाद मंटो ने रूसी और फ्रांसीसी मुसन्निफीन का मुताला किया और तर्जुमा निगारी से अदबी सफर शुरू किया। उनका पहला अफसाना तमाशा था, जो जालियांवाला बाग के सानहे पर मबनी था। मंटो ने मुंबई में हफ्त रोज़ा मसूर की इदारत की और फिल्मी कहानियाँ भी लिखी। मुल्क की आज़ादी और तकसीम हिंद के बाद वह लाहौर मुंतकिल हो गए। मंटो हमेशा कहते थे कि मैं अफसाना नहीं बल्कि मुआशरे का आईना पेश करता हूँ। उनके मशहूर अफसानों में खोल दो, टोमा टेक सिंह वगैरह हैं। सामिन, मंटो ने अपनी तहरीरों में इंसानी फितरत के और अक्सर तारीखी पहलुओं को इतनी महारत से पेश किया है कि उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार माना जाता है। इसके साथ ही सामिन, आइए, वक्त हुआ जाता है एक प्यारी सी गज़ल का, समाप्त करते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

सामीन अफसाना खोल दो फसादात के दौरान बिछड़े जाने वाले एक बाप और बेटी पर मबनी है जिसने बहुत ही अहम तारीखी मंजर को पेश किया है। इसके साथ ही वक्त का इशारा है सामीन हजरात कि आपको कहें अलविदा, चलते चलते एक प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले समात कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दस लाख की लॉटरी, मुझे वाओ।
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शफकत अमानतअली की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म यारियां से। इसे लिखा आरको पावो मुखर्जी ने और इसकी धुन भी बनाई आरको पावो मुखर्जी ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया विशाल शेखर ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म मिकी वायरस से। हानिफ शेख के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है हानिफ शेख ने।

केसरी फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने। तनिष्क बच्ची के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया तनिष्क बच्ची ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: untouchability, dowry system, manual scavenging to honor killings, human trafficking and transgender issues in recent time. Robust laws were passed timely and periodically to ensure and accentuate the dignity of human rights of citizens in this country. Among myriad stars that illuminate the arena of social justice, Nobel laureate Kailash Satyarthi remains one of the brightest. As a grassroots activist, Kailash and the grassroots movement founded by him, Bachpan Bachao Andolan, Safe Childhood Movement, liberated more than 83,000 children from exploitation and developed a successful model of education and rehabilitation and reintegration into the mainstream society. From emancipating young girls from the circus in Uttar Pradesh to rescuing children forced to labor in stone quarry in Faridabad, Kailash Satyarthi ji has transformed many lives. The world is continuously evolving, and so is the nature of social justice. With poverty, malnourishment, nuclear disarmament, pollution, illiteracy, discrimination, toxicity, and apathy, complete social justice is a distant yet achievable dream. The human civilization must not stop in its pursuit of social justice and evolution till the last person in the last line of society is treated with dignity and given reasonable standards of life.
1: You just heard a talk on the topic Principles of Social Justice, and the talker was Ronak Singh. You were listening to this program from Akashvani Patna. Ye आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहाँ चलती है, इधर तो
6: इधर आइए, इधर
7: इधर।
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504। हमारा ईमेल एड्रेस है पटना CBS @gmail.com।
8: शुभ वाणी।

लाभवाणी आकाशवाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए गजल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया था फिल्म लापता लेडीज से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को संबोधन का जीवंत प्रसारण।

0: मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रगट यानी कि हजार मटकों

0: से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are,

0: one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
0: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also our time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

0: ವಿಷ್ಣುರಾ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಮದ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ರಾಜ್ಞಯ ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ.
1: ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶುತೋಷ್, ಮೈ ಆಪ್ಸೆ ಯೇ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ ಕಿ ಕುಚ್ ಸಮಯ ಬಾದ ಯಹಾಂ ಪೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಭಿ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಧ್ವಜ ಪೆ ನಂದಿ ಜಿ ಔರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಹೈ, ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೆ ಹಮಾರೆ ಶ್ರೋತಾಓಂ ಕೋ ಥೋಡಾ ಬತಾ ದೇ.
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है. उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं. अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है. उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है. और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा. त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं. ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा. वो तीन रूप क्या है? सत, रज और तम. इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है. ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है. अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है. इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है. इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है. रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जो साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है. इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है.
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए. हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है. मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर. सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में

0: कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायुसेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance.

0: performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petrol being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल. और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे.
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं. इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे. तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं. और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है. उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं? अ, उ और म. तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है. वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है. और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है. तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं. और
0: ध्वजारोहण.
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है. अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है. इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन. ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए. मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए. लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल. प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है. तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं. हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं. तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? उस अंधकार में हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं. इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है.
1: जी, तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं. और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है. और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है. स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है. पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है. और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे. और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Dr. Rajendra Prasad had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion

0: occasion said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy. It has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में, या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है. और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए मंदिर. इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार.
2: जीत लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held

0: साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैसे है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष नाभि, अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं।

0: अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो
0: बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना लें उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और

0: दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
1: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
0: जी।
1: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता, आप ये भी तो देखें। तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है भगवान का, एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आप मयोव्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर ब्रिंगिंग टू यू द Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now. And meanwhile, we bring you some devotional bhajan.

0: एक विशाल जनसमूह जो है
1: लोगों
0: वो
1: सरदार
0: इस समय
1: पटेल
0: हम
1: ने जो
0: देख
1: नींव
0: पा रहे
1: रखी
0: हैं,
1: उसे
0: और
1: गांधी जी के
0: पारंपरिक
1: शिखर तक
0: परिधान
1: पहुंचा
0: कृष्ण
1: रहे
0: धारण
1: हैं,
0: किए हैं,
1: यशस्वी
0: सर पर
1: प्रधानमंत्री
0: जो
1: श्री
0: है वो
1: नरेंद्र
0: पगड़ी
1: मोदी
0: पहनी
1: जी,
0: हुई है, हाथों में ये
1: बनारसी
0: पटाकाएं
1: हिंदू
0: हैं,
1: क्षेत्र
0: और
1: में
0: माननीय
1: माननीय प्रधानमंत्री
0: प्रधानमंत्री
1: क्षेत्र में
0: जी
1: पधारे
0: पूजन
1: हैं।
0: अर्चन करके
1: आइए
0: यहाँ
1: उनका
0: पर
1: विधिवत
0: आए
1: स्वागत
0: हैं, तो
1: करते
0: माननीय
1: हैं।
0: प्रधानमंत्री
1: सोमनाथ
0: जी
1: सोमनाथ
0: ने
1: अयोध्या जी
0: मस्तक
1: पहुंच
0: पर
1: रहे
0: जो
1: हैं।
0: है
1: जय
0: वो भी
1: सोमनाथ।
0: तिलक धारण
1: आओ
0: किया है,
1: माननीय वड़ा
0: और
1: प्रधान जी,
0: यहाँ
1: लोग
0: पर
1: जीवन
0: विशाल
1: विजय
0: जनसमूह
1: स्वागत
0: जो
1: करिए।
0: है
1: सर्वप्रथम
0: बेहद
1: निवेदन
0: उत्सुक
1: करिए
0: और
1: गुजरात राज्य के
0: उत्साहित है,
1: माननीय मुख्यमंत्री
0: गमछे
1: श्री वल्लभ
0: धारण
1: भाई
0: किए
1: पटेल
0: हुए हैं,
1: अरे
0: अंग
1: सॉरी
0: वस्त्र पहने
1: माननीय
0: हैं,
1: लाल
0: हाथों में
1: मुख्यमंत्री श्री
0: पताकाएं
1: वल्लभ भाई
0: हैं,
1: पटेल
0: लगातार
1: गुजरात जी
0: लहराते
1: कि
0: हुए,
1: आप
0: और
1: सोमनाथ
0: एक
1: स्तूप पर
0: विशाल
1: आधी मेघ
0: स्क्रीन
1: अर्पण
0: जो है वो
1: करिए।
0: दिखाई दे
1: माननीय
0: रही है,
1: वड़ा
0: जिस
1: प्रधान
0: पर
1: जी, लोग
0: कि
1: स्वागत
0: मंदिर
1: सरदार
0: की
1: दर्शो।
0: प्रतिकृति बनी है,
1: समय से
0: माननीय
1: गुजरात की
0: प्रधानमंत्री जी
1: जनता
0: का
1: पति
0: अब
1: आपका
0: अभिनंदन
1: अभिनंदन से
0: किया
1: जो
0: जा
1: चाहे
0: रहा
1: आप
0: है,
1: आइए, साथ
0: पगड़ी
1: आपने
0: उन्हें
1: पार्टी
0: पहना
1: मंदिर
0: कर
1: आइए।
0: अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट
1: अरे
0: किया
1: हमें
0: गया है।
1: मंच पर
0: माननीय
1: विराजमान
0: प्रधानमंत्री
1: विचार
0: जी ने
1: माननीय
0: अभिवादन
1: मंत्री श्री
0: स्वीकार
1: जीतन भाई
0: किया,
1: वाणी,
0: हाथ जोड़कर सबका
1: माननीय मंत्री
0: अभिवादन
1: श्री
0: स्वीकार
1: अर्जुन भाई
0: करते हुए,
1: मोढ़वारिया ने
0: और
1: विनती कि
0: इस
1: आप
0: वक्त
1: माननीय वड़ा प्रधान
0: मंचा
1: श्री को
0: सीन
1: बात
0: जो
1: करशो।
0: गणमान्य व्यक्ति
1: सोमनाथ
0: हैं
1: मंदिर नी
0: उनकी
1: अंदरू फोटो
0: उपस्थिति
1: फ्रेम
0: भी
1: अने
0: इस
1: जमनो
0: कार्यक्रम
1: अर्पण
0: में
1: करिए।
0: माननीय
1: माननीय
0: प्रधानमंत्री जी
1: वड़ा
0: को
1: प्रधान
0: अब
1: श्री
0: एक
1: को
0: स्मृति चिन्ह
1: बहुमान
0: भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
1: Yes,
0: प्रधानमंत्री जी
1: and
0: को भेंट
1: that
0: की
1: was
0: गई।
1: presented
0: अरे
1: by
0: माननीय
1: the
0: मंत्री डॉक्टर अर्जुन
1: मिनिस्टर
0: उदासी
1: इन
0: और
1: गुजरात
0: मुख्यमंत्री श्री
1: गवर्नमेंट
0: गोपी
1: श्री
0: चंद
1: अर्जुन
0: कलियां,
1: मोडवाड़िया,
0: विनती कि
1: एंड
0: आप माननीय वड़ा
1: ह्यूज
0: प्रधान जी को स्वागत करिए।
1: सी
0: सौभाग्य से
1: ऑफ
0: जुड़ा के
1: पीपल
0: माननीय
1: हियर
0: सांसद श्री
1: एट
0: अशोक चौधरी का समा,
1: प्रभास
0: माननीय
1: पाठन
0: प्रधानमंत्री
1: एंड
0: ने यहाँ
1: अनदर
0: मेरा
1: मेमेंटो
0: स्वागत
1: बीन
0: किया।
1: प्रेजेंटेड टू
0: मैं
1: द ऑनरेबल प्राइम
0: अपनी
1: मिनिस्टर ऑफ
0: पूरी
1: इंडिया दैट
0: जनता को
1: फीचर्स द
0: अर्पण करती हूँ।
1: लायन ऑफ गीर, एंड दिस इज क्वाइट क्लोज टू द
0: से आगे बढ़ो
1: गीर
0: और सांसद
1: सैंक्चुअरी,
0: अयोध्या भाई वड़ा
1: and as we
0: बड़ी
1: can see
0: कतार
1: that there's
0: में
1: a
0: श्रद्धा और
1: huge
0: समर्पण करके
1: public who are present
0: मैं
1: here and
0: सोमनाथ
1: have
0: मंदिर
1: come
0: में
1: to
0: माननीय
1: listen
0: प्रधानमंत्री
1: to the
0: श्री
1: honorable
0: अर्जुन
1: prime
0: उदासी
1: minister,
0: माननीय वड़ा प्रधान
1: and
0: जी को
1: yet
0: माननीय
1: another
0: प्रधानमंत्री श्री अर्जुन
1: memento,
0: उदासी
1: a
0: माननीय
1: kalash
0: प्रधानमंत्री
1: been
0: श्री अशोक
1: presented to
0: चौधरी
1: the
0: का
1: honorable prime minister by the Sri Somnath Trust, and
0: धन्यवाद।
1: the honorable prime minister
0: अरे अरे
1: himself is
0: हाँ
1: the president
0: विशाल
1: of the Sri Somnath
0: समयमान
1: Trust,
0: अर्पण
1: and
0: करिएगा।
1: we have
0: हमें
1: now seen a garland being
0: माननीय
1: presented to
0: आपको
1: the Honorable Prime Minister
0: स्थान
1: by the
0: सौभाग्य से
1: organizers,
0: वड़ा प्रधान जी को स्वागत
1: and people have been waiting
0: खूब
1: since
0: खूब
1: a long time
0: आभार
1: to hear the
0: धन्यवाद।
1: Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will
0: सम्मान
1: be
0: भाव
1: addressing
0: से
1: the
0: विभाग
1: gathering
0: अर्पण
1: very
0: करें।
1: soon.
0: जनशक्ति को
1: और
0: मूल्य बताएं।
1: कौशल जी, मैं यहाँ ये
0: श्रद्धा
1: भी बोलना
0: भाजन
1: चाहूंगी
0: की
1: कि जब
0: अर्ज
1: हम बहुत
0: स्थल
1: दूर
0: पर
1: से यात्रा करके
0: सूर्य नाथ
1: जाते
0: माता
1: हैं,
0: का स्थान
1: द्वादश
0: दर्शन
1: ज्योतिर्लिंग जो है
0: समर्पण
1: उनमें से
0: भाव
1: किसी
0: से
1: भी मंदिर के
0: विराजमान
1: दर्शन
0: स्थान
1: करने के लिए
0: करें।
1: तो बहुत
0: सोमनाथ
1: अधिक
0: माता
1: भक्ति
0: की
1: भाव
0: वंदना
1: से भरे
0: करें।
1: होते हैं, तो जो लोग
0: सोमनाथ
1: उसी
0: विराजमान
1: स्थान पर
0: स्थल पर
1: रहते हैं
0: नमन
1: वो अपने आप
0: करें,
1: को बेहद
0: प्रणाम
1: भाग्यशाली
0: करें,
1: मानते होंगे,
0: आज्ञा
1: और इस
0: प्रदान
1: समय जो ये विशाल
0: कीजिए।
1: जनसमूह
0: विभाग
1: हम देख
0: अर्पण
1: रहे
0: करें
1: हैं, इसमें
0: माननीय
1: ऐसे
0: वड़ा
1: बहुत
0: प्रधान
1: सारे
0: जी को
1: लोग
0: स्वागत
1: होंगे
0: करिए।
1: जो
0: सोमनाथ
1: मंदिर
0: मंदिर
1: की
0: की
1: सेवा
0: सेवा
1: में
0: में
1: भी
0: भी
1: लगे
0: लगे
1: होते
0: होते
1: हैं,
0: हैं,
1: वो
0: वो
1: कार्यकर्ता
0: कार्यकर्ता
1: होते
0: होते
1: हैं,
0: हैं,
1: और
0: और
1: इस
0: इस
1: तरह
0: तरह
1: के
0: के
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे
0: सारे
1: लोग
0: लोग
1: हैं
0: हैं
1: जो
0: जो
1: स्वेच्छा
0: स्वेच्छा
1: से
0: से
1: मंदिर
0: मंदिर
1: के
0: के
1: विशेष
0: विशेष
1: कार्य
0: कार्य
1: जो
0: जो
1: हैं
0: हैं
1: वो
0: वो
1: करते
0: करते
1: हैं,
0: हैं,
1: और
0: और
1: यहाँ
0: यहाँ
1: पर
0: पर
1: हम
0: हम
1: इस
0: इस
1: समय
0: समय
1: देख
0: देख
1: पा
0: पा
1: रहे
0: रहे
1: हैं
0: हैं
1: उत्साहित
0: उत्साहित
1: जनसमूह
0: जनसमूह
1: है,
0: है,
1: माननीय
0: माननीय
1: प्रधानमंत्री
0: प्रधानमंत्री
1: जी
0: जी
1: की
0: की
1: उपस्थिति,
0: उपस्थिति
1: इससे
0: इससे
1: आयोजन
0: आयोजन
1: और
0: और
1: भी
0: भी
1: भव्य
0: भव्य
1: और
0: और
1: अब
0: अब
1: स्वागत
0: स्वागत
1: उद्बोधन
0: उद्बोधन
1: यहाँ
0: यहाँ
1: पर।
0: पर।
1: વિશ્વના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ શ્રી જેડી પરમાર, શ્રી પીકે લહેરી, શ્રી હર્ષવર્ધન નોહટિયા, શ્રી વિશદભાઈ મફતલાલ, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી અધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોન્ડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા પ્રચંડ જન સમર્થનના શિલ્પી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ભગવાન સોમનાથનું મંદિર સદીઓથી દેશની આસ્થા, સંસ્કૃતિ, અડગ સંકલ્પ અને પુનર્જાગરણનું જીવંત પ્રતીક છે. આપણી આસ્થાના અજેય અને અતૂટ પ્રતીક આ મંદિરને ધ્વંસ કરવાના અનેક પ્રયાસો થયા અને દરેક વિનાશ પછી સોમનાથ ભગવાનનું મંદિર ફરી વધુ તેજસ્વતા સાથે ઊભું થયું છે. આજે આ દિવ્ય મંદિર વિધ્વંસમાંથી પુનઃનિર્માણના सरदार साहेब ना अड़ग

सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का,

शिव जी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ भी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया,

औरत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन

पहुंचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे हैं।

बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में, अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विलंब ना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन

0: इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश के प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ,
1: महादेव। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple

0: temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture. And he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra, Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: कहां चलती है, इधर तो आओ।
8: इधर
7: इधर आइए।

0: सर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आशा भोसले को आपने सुना फिल्म कुदरत में, मजरू के बोल आडी बर्मन का संगीत। एक अंतराल के बाद सुनेंगे कुछ और गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: पुराने वक्तों को याद करके कभी रोती है

आशा भोसले को अभी आपने सुना, इस नगमे को हमने लिया था फिल्म नमकीन से, गुलजार की रचना थी और इसे संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने। एक बार फिर से हम सुनवा रहे हैं आशा भोसले को, इस गाने को लिया है फिल्म इजाजत से, गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म इजाजत में अभी आपने आशा भोसले को सुना, गुलजार के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

फिल्म बेमिसाल में भी आपने किशोर कुमार को सुना, आनंद बख्शी के बोलों को आर डी बर्मन ने संगीत से संवारा, और अब किशोर कुमार को हम एक बार फिर सुनवा रहे हैं। फिल्म है माहन, अनजान की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म महान में, अनजान के बोल, आरडी बर्मन का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी अधिनियम 2025 को देशभर में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह कानून 1 जुलाई 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी होगा। मनरेगा की जगह लाए गए इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, आजीविका के साधनों को सशक्त करना तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। इसके लागू होने से ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी और गांवों में अस्थायी रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम से सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत स्तर पर महीने में 2 दिन शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की

0: शिकायतों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी लेने, रिमाइंडर भेजने तथा प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिन के अंदर उसका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित खटौरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्लांट की स्थापना से कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महावीर मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए और हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने तरक्की याफ्ता भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी एक्ट 2025 को मुल्क भर में नाफिज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत देही तरक्यात के जरिए जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 1 जुलाई 2026 से भारत की सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में मुअसर होगा। मनरेगा की जगह लाए गए इस नोटिफिकेशन का मकसद देही हलकों में रोजगार के मौके को बढ़ाना, आजीविका के वसाइल को मुस्तहकम करना और खुद इन्हसारी देही इक्तसादियात को फ़रोग देना है। इसके नाफिज होने से देही तरक्यात मंसूबों को नई रफ्तार मिलेगी और गाँव में मुस्तकिल रोजगार को पैदा करने में फ़रोग मिलेगा।

0: जाएगा। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में वजीर आला सेक्रेटरीट में मुनाकिद प्रोग्राम से सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। आम लोगों की शिकायत के फौरी हल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि पंचायत सतह पर महीने में दो दिन कैंप लगाकर लोगों के मसलों को हल किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला मजिस्ट्रेट और एसपी करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को शफाफ तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर मरबूत ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज करने, सूरत हाल जानने और रिमाइंडर भेजने और रद्दअमल देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर मामला दर्ज करने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसका निपटारा कर दरख्वास्त दहिंदगान को तहरीरी इत्तला दी जाएगी। वजीर आला सम्राट चौधरी आज पटना में मंत्री नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का इफ्तिताह किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत तामीरशुदा इस पथ से मुकामी लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और बीजेपी के कौमी सदर और राज्यसभा रुकन नितिन नवीन भी मौजूद थे। मगरबी चंपारण के रामनगर वाक़े खटोरी गांव में शुमाल मशरक भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का इफ्तिताह हुआ। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानकनी और कोयला सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्लांट के क़याम से ज़रई सलाहियतों के शोबे में नया इनकलाब आएगा और नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खास महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर की तारीख में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जल अभिषेक किया गया। इस बीच एयरफोर्स ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर दिलकश करतब दिखाए और हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर की दोबारा तामीर के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में मनाया जा रहा है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अहम शैवालियों में खास पूजा और अर्चना की जा रही है। मगरबी हवा के असर से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा एक हफ्ता तक आंधी बारिश की सूरत हाल बने रहने का इम्कान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत रियासत के शुमाल मगरिब और जनूब मशरक खित्तों में तेज़ हवा के साथ बादल गरजने की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिला के अजगैबीनाथ धाम के नमामी गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से दो नौजवानों की मौत हो गई। SDRF की टीम ने लाशों को बरामद कर लिया है। गया जिला के बाराचट्टी थाना हलका में GT रोड पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से एक स्कूली तालबा की मौत हो गई। वाकया से मुश्तइल लोगों ने सड़क जाम कर मुजाहरा किया। सारण जिला के भेल्दी थाना इलाके में ट्रैक्टर की जद में आने से एक मोटरसाइकिल नौजवान की जाए वक़ू पर मौत हो गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सीआरपीएफ, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC हिंदी ट्रांसलेटर के भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव रखता हुआ होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों

0: आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुछ भी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा

0: में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने

0: वैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We like it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है।

0: पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।

0: माँ।
1: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
0: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
1: हाँ।
0: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
1: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
0: जी।
1: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
0: जानता हूं मां।
1: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
0: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
1: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।

0: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
2: यस सर।
1: नाथू सिंह निशाना साधो।
0: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर।
0: सर
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
2: जी।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है,
1: जी
0: और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है।
1: मिलते हैं बिल्कुल,
0: तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठ कर खाते हैं तो कितना
1: बनाते
0: मजा
1: हैं तो
0: आता
1: बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: लगता है। जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है, लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगो कर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने चने का, भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा, और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह
1: लिखते
0: रही
1: हैं कि
0: हैं।
1: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग कहते हैं लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम किस
0: दोनों में
1: चीज
0: क्या फर्क
1: क्या
0: होता
1: फर्क
0: है।
1: होता है।
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
1: जी
0: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात है यानी आप इतने से ही निकल ली पढ़
0: तो अगली
1: जी
0: बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना,
1: जी
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं।
1: पक्का।
0: ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं। कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है। तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीत्या संक्रमित होती है। आगे चल के तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
0: जी
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी

0: के आजूबाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज, जो भूमध्य सागर के आजूबाजू में कंट्रीज थी, इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया, जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया, और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें, तो भारत में कुछ कुछ जगह पर यह बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है, वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में यह बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में, गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
1: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है। तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं ना एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं, इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से, और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रीता जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है, और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूंगा।
2: फूलों

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। ये आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है, ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे इनका जो शरीर में अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफ़ी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियाँ आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दें तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियाँ होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियाँ, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
0: बीटा,
1: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर

0: ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज़ की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा।
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चों में पीलिया दिखता है, जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रंग संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीज़न जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी। तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा, हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है।
0: इसमें अभी देखिए, ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है, वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है, तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक आध केस ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया, तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है, तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ, तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमज़ोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि

0: अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
1: देखिए, धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं।
0: हो
1: तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उस

0: को होना जरूरी होता है।
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी ब्लड चढ़ाने कितना ज़रूरी होता है, तो
0: कब कब?
1: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका आकार मान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
0: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
1: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है, तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, तो इन दवाइयों की जो मात्रा रखती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पे कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
0: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
1: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया, तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
1: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी। पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाज ही रही है।
0: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
1: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।
2: भारत

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के समय स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। श्रोता, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक हम आपके साथ बने रहेंगे। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवाओं को संबोधित युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में और मैं हूँ भारती।
1: नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ स्मृति। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ढेर सारी सुकून भरी यादें और बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें।
0: तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम के में प्रेरक पंक्ति के साथ कि ऐसा समझिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही क्यों आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा भारती। और आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जो जिंदगी के मूल्यों को केंद्र में रखते हैं, जिन्होंने रखा और उसी को असली शिक्षा माना है।
0: बिल्कुल, आज बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति के बारे में, जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक थे। उनकी विचारधारा हमें अपनाना ही चाहिए और अपनाने योग्य है। अगर हम उन्हें अपना सके तो बहुत बड़ी बात होगी और तो और हमारे लिए फायदेमंद भी होगी। दोस्तों,
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रसिद्ध कविता के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम में,
0: जो कि स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और कवि और देशभक्त थे। और दोस्तों, जब बात लेखनी के क्षेत्र की हो रही

0: है तो हम सादत हसन मंटो को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसे लेखक जिन्होंने सच्चाई के साथ अपनी रचनाओं को पेश किया है।
1: साथ ही जानेंगे कुछ रोचक तथ्य और समाचार भी, और उसके साथ सुनेंगे आपके लिए मनपसंद गाने।
0: बिल्कुल स्मृति, तो आइए सुनते हैं गोलमाल 3 फिल्म से अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आइए सुनते हैं शान की आवाज में।

0: सदत हसन मंटो उर्दू साहित्य के ऐसे महान लेखक थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया।
1: बिल्कुल, उनका जन्म आज ही के दिन यानी 11 मई 1912 को लुधियाना में हुआ था। उनके पिता गुलाम हसन मंटो एक जज थे। मंटो का बचपन अमृतसर में ही बीता, जहां उन्होंने जीवन के अनेक अनुभव प्राप्त किए जो आगे चलकर उनके लेखन का आधार बने। मंटो की पढ़ाई में तो विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन साहित्य के प्रति उनका झुकाव काफी गहरा था। और स्मृति, हम ऐसा देखते भी हैं कि अगर पढ़ाई में विशेष रुचि ना भी हो, लेकिन साहित्य के प्रति अगर किसी का रुझाव है, यानी समाज के हित के प्रति किसी का रुझाव है, रुचि है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो जीवन के मूल्यों को दर्शाती है ना?
0: सही बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत सही भी बात कही है
1: जी।
0: तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक अध्ययन किया, जहां उनके विचारों और लेखन शैली को एक नई दिशा मिली। प्रारंभ में उन्होंने विदेशी साहित्य का अनुवाद किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने मौलिक कहानियां लिखनी शुरू कर दी।
1: मंटो ने लगभग 250 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं श्रोताओं, नाटक और रेडियो नाटक भी लिखे, जो हम सुनते हैं रेडियो पे बहुत सारे नाटक को प्रसारित किया जाता है, उन सारे नाटकों को भी उन्होंने लिखा है। और तो और, जो भी आज पाठकों को वो मतलब कितने प्रभावित करते हैं और बहुत सीख देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मंटो की कहानियों में समाज का यथार्थ रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके प्रसिद्ध कहानियों में जैसे कि तोबा, टेक सिंह, ठंडा घोष्ट और खोल दो, ये सारे बेहद प्रमुख हैं। इन कहानियों में उन्होंने मानव स्वभाव, हिंसा और सामाजिक विसंगतियों को भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। स्मृति,
0: बिल्कुल, हमने कॉलेज में पढ़ा था तोबा टेक सिंह, ये कहानी विभाजन के समय की है और एक व्यक्ति के मनोस्थिति कैसी होती है या अपने देश को लेके, अपनी धरती को लेके, वो उस कहानी में बहुत ही करीने से, बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने दर्शाया है। सन 1947 में हुए पार्टीशन ऑफ इंडिया का मंटो के जीवन पर और लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
1: और स्मृति, आप अभी बता रही थी कि उस कहानी में उन्होंने विभाजन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो 1947 में हुए पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में उनका लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो कहानी इनके जीवन से ही रिलेटेड है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसलिए भी ऐसा
0: उन्होंने समाज को देखते हुए, लोगों की मनस्थिति देखते हुए, जो आसपास के वातावरण जैसी हो गई थी, उन पर उन्होंने कहानी लिखी थी और वो बहुत ही बेहतरीन है, लोगों को पढ़नी चाहिए उनकी कहानी। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए लाहौर में। विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़ी मानवीय पीड़ा को उन्होंने अपनी कहानियों में अत्यंत सजीव रूप में चित्रित किया।
1: और मंटो का जीवन विवादों से भी घिरा रहा। उनकी रचनाओं को अश्लील कहकर उन पर कई बार मुकदमे चलाए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि वे समाज की सच्चाई को दिखाते हैं, न कि अश्लीलता फैलाते हैं। उनकी लेखनी में सच्चाई और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में ही उनका निधन भी हो गया, क्योंकि वो वहाँ रह ही रहे थे। और उनका जीवन भले ही संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उन्हें अमर बनाती हैं दोस्तों। बाद में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज प्रदान किया गया।
0: बिल्कुल, सादत हसन मंटो एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का कार्य किया। उनकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सच्चाई कभी कभी कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और सुनते हैं कृष्ण।

0: दोस्तों, सच्चाई किसी रास्ते या संस्था की मोहताज नहीं होती। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। कितनी गहरी बात है ना?
1: बिल्कुल स्मृति। और आप जानती हैं, आज जय कृष्णमूर्ति का जन्म दिवस है और दोस्तों उन्हीं के द्वारा दी गई ये प्रेरक पंक्ति है।
0: बिल्कुल भारती, वे बाहरी बदलाव से ज्यादा अंदरूनी बदलाव को महत्व देते थे। उन्होंने कहा था कि अगर इंसान खुद को समझ ले तो दुनिया की कई सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।
1: बिल्कुल सही बात कही है आपने। लोग दूसरों को देखने में, दूसरों की गलतियों को देखने में जो समय व्यर्थ करते हैं, खुद में भी थोड़ा सा खुद को भी समय दे, खुद के भी मन को झांके। और पता है स्मृति, बचपन से वे एक अलग प्रकार की शांति और संवेदनशीलता थी उनमें। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि आज के समय में जब कोई न किसी की विचारधारा या भीड़ या फिर दिखावे के पीछे भाग रहा है, तब कृष्णमूर्ति जी हमें खुद को समझने की प्रेरणा देते हैं।
0: सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, महान दार्शनिक, चिंतक और आध्यात्मिक शिक्षक जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म 11 मई 1895 के आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में हुआ था।
1: बचपन से ही वे एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति रहे थे। इसी के कारण थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट और CW लीड बीटर ने उन्हें विश्व गुरु के रूप में पहचाना और उनकी देखरेख भी की।
0: हाँ दोस्तों, विश्व शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश तो हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी संगठन की उपाधि को स्वीकार नहीं किया।
1: और स्मृति, आपको पता है उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी?
0: क्या थी?
1: वे कहते थे, किसी व्यक्ति को मत मानो, अपने अनुभव को समझो। और पता है सबसे बड़ी बात, अनुभव की बात आप कहती हैं तो मुझे पता है क्या याद आता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को आप समझा रही हैं कि आग के पास मत जाओ, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, वो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो आग के पास जाएगा, लेकिन जब उसका हाथ गर्म से जलेगा तब उसे वो अनुभव प्राप्त होगा और वो अनुभव वो आजीवन याद रखेगा कि मेरा हाथ आग से जला है और मुझे आग से दूर रहना है।
0: बिल्कुल, हर एक इंसान, हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव अपने अनुभव से ही सीखता है और आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: आज सोशल मीडिया के दौर में यह बात और भी जरूरी हो जाती है, जब हम अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों को राय और दूसरों के ऊपर अपनी राय, अपनी सोच थोपने भी लगते हैं
1: और कहीं ना कहीं हम अपनाने भी लग जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: बिल्कुल है ये तो। और कृष्णमूर्ति जी हमें पता है सवाल पूछना भी तो सिखाते हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट इवोल्यूशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बिना किसी निर्णय के किसी चीज को देख पाना ही असली बुद्धिमत्ता है। मैं इसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ कि अगर आपका दोस्त फोन देख रहा है आपसे बात करते समय, अगर बार बार अपना फोन देख रहा है तो आपके मन में तुरंत ही एक भावना उठ जाती है कि ये बड़ा मतलबी है, इसे मेरे बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे
0: इग्नोर कर रहा है,
1: इसे तमीजी नहीं है, और आप उस दोस्त को नहीं देख रहे बल्कि आप अपनी बनाई हुई नाराजगी और निर्णय को देखते हैं। इससे आपके बीच बहस हो सकती है, आपका मूड भी खराब हो सकता है। वहीं इनका कहना है, जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि आप ये मत देखें, आप उसे बुरा मत कहें, ना खुद को छोटा महसूस करें, आपका मन भी शांत रहेगा, बुरा भी नहीं लगेगा।
0: सही बात है। जब आप किसी फूल को देखते हैं और तुरंत कह देते हैं ना कि ये तो बहुत सुंदर है, कितना सुंदर फूल है ये, तो क्या आपने देखना बंद कर दिया और शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया? लेकिन जब आप बिना कुछ बोले, बिना उसे सुंदर या साधारण कहे, बस उसकी पंखुड़ियों और उसकी गहराई और उसकी बनावट को देखते हैं और उसे निहारते हैं, उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, तब आप अपने मन में

0: एक इमेज बना लेते हैं कि ये
1: वही
0: फूल
1: वही
0: बहुत ही
1: बिल्कुल, तो
0: खूबसूरत
1: वही
0: है।
1: एक प्योर ऑब्जर्वेशन हम उसे देखते हैं, हम शब्दों के माध्यम से हमारी जो सोचने की जो क्षमता है उसे हम थोड़ा खंडित कर सकते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सोचते हैं तो फिर हम सिर्फ सोचते ही हैं और अच्छे से सोचते हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर हम अपने जीवन में भी उनकी एक बात उतार लें तो शायद तनाव काफी कम हो जाए।
0: आज हर कोई भाग दौड़ में है, मन हमेशा भविष्य या अतीत में उलझा रहता है, लेकिन वे वर्तमान में जीने की बात करते थे।
1: बिल्कुल, कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी सोच। श्रोताओं जरा सोचिए, क्या हम कभी खुद के साथ कुछ पल शांति से बिताते हैं? क्या कभी अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं? जरा सोचिएगा जरूर।
0: बिल्कुल दोस्तों, सभी को देखिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मगर खुद को भी देखिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। खुद से रोज सवाल कीजिए,
1: हाँ
0: खुद पर भी ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्मृति, आप एकदम सही बात बोल रही हैं। और कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा

0: अपने चारों तरफ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मगर खुद को भी देखिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। खुद से रोज सवाल कीजिए,
1: हाँ
0: खुद पर भी ध्यान दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्मृति, आप एकदम सही बात बोल रही हैं। और कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया था। उनका कहना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इंसान को संवेदनशील बनना चाहिए।
0: बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और हमें सचमुच शिक्षा के माध्यम से खुद को परखना और खुद को समझाना भी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत और विदेशों में कई विद्यालयों की स्थापना में योगदान दिया, जहां बच्चों को डर और प्रतिस्पर्धा से मुक्त वातावरण देने की कोशिश की गई। आज के माता पिता और शिक्षकों के लिए भी उनकी ये बातें बहुत ही प्रेरणादायक है।
1: सही कहा, बच्चे ही तो भविष्य का निर्माण करते हैं, और बच्चों को केवल सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। अगर आज के बच्चे ही ये सब चीजें सीखेंगे, लोगों की मदद करना सीखेंगे, अपने ही सहपाठियों की मदद करना सीखेंगे, तभी तो भविष्य में भी वे बड़े होकर दूसरों का मदद करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और सामाजिक सद्भाव बना रहेगा।
0: बिल्कुल, आज के बच्चों में पेशेंस और मोरल वैल्यूज घटते ही जा रहा है। जो चीज़, जो सलीके तौर तरीके हमने अपने पेरेंट्स से सीखे, वो शायद आज के बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में मिसिंग है।
1: तो जय कृष्णमूर्ति जी की जो धारणा है या उनकी जो बातें हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक बनने वाली हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल, इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है।
1: और जब मन भय और लालच से मुक्त होता है, तभी तो जीवन सुंदर बनता है दोस्तों।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, उनकी जयंती पर आइए हम सभी एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, थोड़ा रुकेंगे, खुद को सुनेंगे और बिना पूर्वाग्रह के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे।
1: बिना किसी सोचे समझे किसी बात का निर्णय ना ले, पूरी समझ के साथ ही किसी की धारणा अपने मन में बनाए। तो आइए अब सुनते हैं नीले नीले अंबर पर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं, गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम युववाणी में। अब हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, कवि और देशभक्त थे। उनका जीवन साहस, बलिदान और देश प्रेम का अद्भुत उदाहरण था।
1: बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। बचपन से ही बिस्मिल जी की देशभक्ति की भावना तो प्रबल थी ही, और प्रारंभिक बचपन में ही वे कविताएं लिखने लगे थे, उर्दू भाषाओं में अच्छे ज्ञाता भी बन गए थे।
0: राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का लक्ष्य रखते थे।
1: बिस्मिल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घटना काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी।
0: इस घटना में उन्होंने और उनके साथियों ने सरकारी खजाने को लूटकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी। इस कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया।
1: राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पता है स्मृति, ये जो कविता है ना, ये मैं स्कूल टाइम में इतना ज़्यादा अच्छे से गा कर सुनाया करती थी, और हमारे शिक्षक भी हमसे बड़े खुश रहते थे इस कविता के लिए। और उस समय से ही इस कविता में जो देशभक्ति की भावना है वो आज तक हमारे दिलों में जागृत है, और जो सुन रहे हैं श्रोता हमारे, उन लोगों की भी जो देशभक्ति भावना है वो जागृत हो ही गई होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके लेखन में देश के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जो स्पष्ट दिखाई देती है।
0: बिल्कुल। अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी

0: दी गई। अपने अंतिम समय में भी वे अत्यंत साहसी और निडर रहे।
1: उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें ये सिखाता है कि देश के लिए त्याग और समर्पण सबसे बड़ा कर्तव्य है।
0: उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।
1: उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता से ही देश आगे बढ़ सकता है। युवाओं को राष्ट्र सेवा, ईमानदारी और एकता का संदेश भी देते थे। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में अगला गाना।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जो की हम स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने सक्रिय भाग लिया है।
4: जी हाँ, 11 मई 1888 को दिल्ली में जन्मे असफ अली जी की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा भारत में समाप्त करके वे इंग्लैंड गए और वहाँ कानून की पढ़ाई की।
3: और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग लिया ही, महात्मा गांधी के विचारों से भी वे बहुत प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में के दौरान अंग्रेज सरकार ने नेताओं को जेल में डाल दिया। असफ अली भी गिरफ्तार किए गए और फिर लंबे समय तक जेल में रहकर देश के लिए संघर्ष किया।
3: वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे दोस्तों। उनका मानना था कि भारत की शक्ति उनकी विविधता और एकता में है। उन्होंने समाज में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश दिया।
4: उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता से ही देश आगे बढ़ सकता है। वे युवाओं को राष्ट्रीय सेवा, ईमानदारी और एकता का संदेश देते थे।
3: तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये सुंदर सा गाना। बिहार में डिजिटल और तकनीकी विकास को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार अब गांवों तक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच मजबूत करने पर काम कर रही है दोस्तों।
1: तकनीकी संवाद में हम ये भी जानेंगे कि कई सरकारी सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
0: हाँ, इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि वे आने वाले समय में रोजगार के बेहतर अवसर पा सकेंगे।
0: बिल्कुल, बिहार सहित कई राज्यों में स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा भी दिया जा रहा है दोस्तों। तकनीक का ये बढ़ता कदम बिहार को डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
1: अब हम जानेंगे आज के प्रमुख सुर्खियों के बारे में। देश भर में मौसम ने बदला मिजाज, कई राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना जताई गई।
0: देश भर में बैरियर फ्री टोल सिस्टम की शुरुआत, हाईवे यात्रियों को मिलेगा तेज और सुगम सफर का अनुभव।
1: असम में नई सरकार के गठन की तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हो चुकी है।
0: बिल्कुल, आईपीएल 2026 में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चर्चा में रहा है और क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह तो चरम पर है ही।
1: देश में स्टार्टअप और बिजनेस को बढ़ावा।
0: रेल और सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में कई नई परियोजनाओं पर भी काम जारी है।
1: तकनीक और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी साथ में देश में स्मार्ट सुविधाओं का भी दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
0: तो दोस्तों, कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं के और सुनिधि चौहान की आवाज में खट्टा मीठा फिल्म से सजदे गाना।

तो दोस्तों, अब हम बढ़ चुके हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका हम सभी को इंतजार रहता है और आपको भी, यानी रोचक तथ्य। मॉरिशस ही वह एकमात्र जगह है जहां विलुप्त हो चुका प्रसिद्ध डोडो पक्षी पाया जाता था। और जानते हैं दोस्तों, यहाँ चामल 7 कलर

0: बहुत आसानी से उपलब्ध है और बहुत ही सही ढंग से उसे चलाया जाता है। अफ्रीकन क्षेत्र में स्थित होने के बाद भी मैच्योरिटीज़ एकमात्र ऐसा देश है जहाँ भोजपुरी भाषी लोग हैं और वहाँ की राजकीय भाषाओं भोज में से एक है हमारी भोजपुरी। तो आइए हम एक भोजपुरी से रिलेटेड एक गाना सुनते हैं जो कि हमें पता है कि आपको ज़रूर पसंद होगा। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि यहाँ अंग्रेज़ी, फ्रेंच और क्रेओल तीनों भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं जो इसकी विविध संस्कृति को भी दर्शाती हैं। तो आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गाना जो है फिल्म
1: नदिया के पार
0: से।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती के सुनहार लोगन के संगीता के प्रणाम। कहीं सभी का हाल चाल बा। देखी कुछ बात आखिन देखी ऐसन बा जे हम रोआ सभी से बाचल चाहतनी। वो कि राते जोन बा हमरा बगल में एगो जोर जोर से रोए के आवाज आ रहा रहे। अब हमने के समझ ही ना पावत भाई का बात बा, ये काहे खाते चिल्लम चिल्ली होता और लगे कि जैसे मतलब एक औरत के जोन बा वो एक तरह से कह सकते नहीं कि ओकरा के सतावल जा रहा बा, पिटाई कइल जा रहा बा। कारण का बा ये पता ना चलल, लेकिन कहीं से एक आवाज़ आई, पुरुष आवाज़ रहे जे कि भाई हम देखने कि जोन की हमने के आजकल इतना ओकरा खातिर संघर्ष उतना सब स्वयंसेवी संस्था से लेके का हो रहल बा का भाई, तो दहेज खातिर उनकर मार पिटाई होत रहे कि भाई तहार बाप माई है ना दिलस हो ना दिलस है ताना। तो देखिए बड़ा ही शर्मनाक बा आज के समय में, समझ ली कि दहेज मुक्त ब्याह जोन बा के बात हमने के कर रहल बानी, सामाजिक कुरीति के खत्म करे के पहल हो रहल बा, बिना लेन देन फिजूल खर्चा दिखावाबाजी खत्म करे के और इस सादगी से ब्याह संपन्न करे के बात हो रहल बा। और भाई देखी बात होके के भी चाहिए, काहे कि जमाना बदल गई बा। अब का लड़का का लड़की सभी अपना गोड़ पखाड़ बा और ओहिजा देखी केहू के देला लेला से केहू संपन्न ना हुई, और जोन खुद के कमाई से जोन आपन श्रम से जोन कमाइल धन से अगर एक चीज भी अपना घर में अगर हम उकरा के भरतनी तो समझ ली कि आपन घर गृहस्थी काते जोन सामान हमने के आपन पैसा से खरीदतनी ओकर मोह छो जोन बा

प्रति लगाव जोन बा उ एगो अलगे हुई। तो हम तो बस यही कहल चाहब रुआ सबे से कि देखी ब्याह में फिजूल खर्ची से बाची सबे, गरीब परिवार के भी देखी खुशी जोन खुशी खुशी हम कह सकतनी कि शादी कर सकता लोग, लोग देखावा बाजी में बर्बाद बा। और सामाजिक सम्मान जरा कि लोग कहला कि बेटी के बोझ ना समझे के चाहिए, बेटी कुल के भाई दीपक भी बड़ी। आज कोना बात में बताई रउआ सब है कि बेटी कम बड़ी और सबसे बड़ा चीज़ बा कि शांतिपूर्ण जीवन जिए खाते बिना मतलब कौनो लेन देन के संबंध जोन होकेला बनेला एक दूसरा से वो बड़ा ही पवित्र बनेला। और ऐसन ब्याह ना केवल दहेज प्रथा जैसन कुरीति पर प्रहार बा बल्कि युवा पीढ़ी खातिर प्रेरणादायक उदाहरण भी बा। तो यही से हम कहल चाहब कि भाई दहेज वहेज के प्रति एकदम रुआ सबे एकरा पर रोक लगाई। आसपास में अगर हो रहा बा तो हमने के जिम्मेवारी बनता कि ओकरा प्रति लोग के आँख जोन बा खुले के काम करें। और संगे संगे देखी एक बात और कहब कि भाई ये कुल तो हो ही रहा बा, संगे संगे आज के जोन बाल बच्चा जोन कहल जाला कि पति पत्नी लड़का लेके दोनों कमाता लोग, तो ऐसा में एक यहाँ पे बात कहल चाहब कि बुजुर्ग जे बाड़े घर के दादा दादी माई बाप जे भी बा लोग कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अकेलापन के शिकार हो रहा बड़न। तो ऐसा में हम कहल चाहब कि बुजुर्ग जे हमने के बरगद के काम करे ले उनका बिना हमने के कोनो अस्तित्व नहीं खे। तो हम यही कहब कि भाई ऐसन बुजुर्ग लोग खाती हमने के उनकर देख रेख खाती वहाँ के स्वास्थ्य के प्रति वहाँ के जो इमोशनल जो हम कह सकते हैं कि मानसिक शांति खाती शारीरिक सुख खाती उनकर देखभाल संगे संगे बड़ बुजुर्ग के भाई हमने से कुछ चाहिए नहीं वहाँ सभी खड़ा के लिए बनी तब आज हमने के अपना पैर पर खड़ा होइल बनी। तो हमने के भी जिम्मेवारी बना था कि ठीक वही तरह उनकर देखभाल करी और उनकर जो भी कमी बा ओकरा के पूरा करी। समय चाहिए तनिक सा जब मन होके जब रउआ पास तनी सन खाली समय होके तब बस बैठ के जोन बा बतियाई सब है और ताकि उनका भी लगे कि हमारे इस एक घर में जोन बा वो महत्व बा। ऐसन ना कि भाई हम ऐसन बानी के वो कोना धैले बानी आ केहू जो अपना अपना में सब लोग जोन बा अपन व्यस्तता शो करता कहीं हमार एह घर में का मतलब उपेक्षा भाव से ऊपर उठे के बा। और सही बात यही बा कि वहाँ सभी के गांव घर में देखी हमने के घर में सगरे बिजली आ गई ऐसा नहीं के, लेकिन जहाँ वहाँ वहाँ के उठना बैठा होता मान ली कि जाए के बाद नहाए के बाद ई करे के बाद तो मतलब हमेशा ऊँचा गांव देहात में लोग सब जगह झकझक बल्ब बत्ती लगा दी आ जहाँ मान ली कि जाए के बाद बाथरूम उथरूम तो उन्हें लोग अंधेरा कर ले रहा। तो ऐसा ना करी साँप बा बिछा बा ई कुल से और हमेशा बड़ बुजुर्ग के साथ जोन बना कोई ना कोई एक आदमी के रहे के चाहिए। भावनात्मक सहयोग बहुत जरूरी बा और तबे जोन बा एक संपूर्ण जोन परिवार बना ओकरा में खुशी जोन बा बरकरार रहे। कहीं से ऐसा परिवार हुआ ना देखत हो कब जेकि बूढ़ बुजुर्ग के जे बा ओकरा के उपेक्षा करेला आ वो परिवार जोन बा वो सुखी बा। हम तो भाई अपना मतलब कह सकते नहीं अनुभव से कि ऐसा हम नहीं देख ले। तो ऐसे आशीर्वाद बहुत जरूरी बा। तो चलिए आज और भी गपशप होगी लेकिन अभी हमार विचार बा कि वो हमने के लोकगीत सुनल जाओ कलाकार बनी साधु शरण सिंह और यहाँ के साथी लोग।

0: वाह वाह, अभी हमने के सुनत रहनी जा लोक भजन साधु सरन सिंह और इनकर संगतिया लोग से। तो हमने के भाई गीत गवनई से कबो मन ना भरे, आगे भी हमने के गीत गवनई सुनब जा, लेकिन अभी हमने के एगो सुनल जाई कथा पाठ कथाकार बानी पूनम आनंद। त आई सुनी सभे कथा पाठ।
1: रजत और सुनैना के घर में जवन एक दू महीना से सुखबुगाहट रहे, आज उ खत्म हो गई। काहे कि दोनों कमासुत लैका लैकी के बियाह करे खातिर एक दिन रखा गई रहे। बियाह तय होखे से ज्यादे खुशी के बात ई रहे कि दोनों परिवार के जोड़ी बहुते मन जुगत मिलल रहे। बहुते साधारण परिवार से मेहनत करके दोनों आज अपन गोड़ पर खाड़ भई रहले स। कतना टोना मोना सुनला के पड़ा रहे, जब दिन फिरल तब जाके समाज में मान दान बढ़ल। कुछ ऐसा

बात होखेला जेकरा खातिर सब दिना से रगर झगड़ करे के ही पड़ेला। ई बात जे आजुओ बा उ बा कतनो तरक्की भइला के बाद खत्म नइखे भइल, बाकी कम जरूर हो गइल बा। ओही में एगो आजुओ बड़का समस्या बा, उ है लइका भालइकी के पढ़ाई। समाज में कुछ लोग इन लइका के पढ़ावे में पाछे हट जाले, भले ओह पाछे हटे के कारण कुछ भी होखो, बाकी कुछ लोग इन ऐसनो बाड़े जे कोनो तरह से मेहनत करके लइकन के पढ़ावे में दिन रात एक कर देवेले। बाकी जब वही घर में लइकियन के पढ़े पर बात उठेला तो सभे चाहेला कि का फायदा बा एकनी के पढ़ावे से, इनकरा पे खर्चा बर्चा करके आ फिर से दान दहेज भी तो देवे के पड़ेला। लइकियन सब पढ़े में कतनो जियावन होखस, उनकर पढ़ाई करे पे पाछा हटे वाले लोग अधिका बाड़े। उ तो भला हो सरकार के जे तरह तरह के लाभ वाला योजना के मनावे में और ओकरा के बढ़ावे खातिर बहुत मेहनत कर दिहले बा। बाकी जब यही संतुलन में एक दो बार देरी हो जाला तो सुधरे में तो तनी समय लागबे करी। साँच पूछी तो पढ़ाई से ज्यादा ब्याह के खर्चा खातिर लोग जोड़ घटाओ करे लागेला। बाकी अगर जोश आ जुनून होखेला तो बहुत सोच आ विचार भी बदल जाला। यही आज के कहानी सुनैना पे भी शुरू भइल। ई लड़की पढ़े खाती घर में काम काज करे आ मन लगा के अपन पढ़ाइयो करे, जेकर परिणाम रहे कि सभे स्कूल से लेके घर में इनकर बड़ाई करे। बाकी यही कहे से पाछे ना हटे कि समय रहते ब्याहो कर देवे के होई। ई बतिया मुंह से निकले भर के देरी रहे कि जेकरा देखो वही आदमी सुनैना के मलिकार बने लागल। ओह घरी सुनैना चुप लगा गईली, काहे कि उनका कुछ कर दिखावे के रहे। जब 8वां के स्कूली परिणाम निकलल तो स्कूल में मास्टरनी साहेब से लेके हेडमास्टर साहेब सुनैना के माई बाबूजी के बुला के बहुत तेज बसी देले, कहले कि देख लीही आपन बेटी के कतना आगे ही अभी बढ़ी, अभी तो शुरुआते बा, आ साथे साथे एकर पढ़ाई आगे खाती भी पढ़े में जोड़ लगा दिहले। पढ़ाई से होखे वाला सुविधा फायदा दोनों समझावे लगले। ई सब सुन के माई बाप के बहुत अचरज लागल आ तनी नहियो लागल, काहे कि उ तो अपन बेटी के सब कुछ रंग ढंग देखत रहले। एने स्कूल से घरे पहुँचत पहुँचत कतना लोग ऐसन रहले जे कह दिहले अब पढ़ाई लिखाई छोड़ाव आ बड़ ढूढ़े निकल, न तो बिरादरी में पढ़ल लड़का ना मिली। केहू कहे लागल उमिर अगर ससर जाई तो लड़का भी तो अहे मिली। ई बात समझ ली है, धीरे से एकाध लोग एहू कहले जेकर लइकियन उजियावन होखेली उहे नु आगे पढ़ी, न तो बाप दादा लेखा अपन जिंदगी काटी यही गांव घर में रह जाई। कुछ लोग कहे लगले अपन जात बिरादरी के सरकारी लाभ बहुते उठावल जरूरी बा, पढ़ाई करा देब तो दाम दहेज से भी कैसे जान छूटी। ये सब सोच के ही अपन बेटी के पढ़ई है समस्या और बढ़ जाई, अपन रहन सहन में लड़का कहाँ से मिली, कैसे खोजब जे जितना मुंह उतना बाप। घरे पहुँचत पहुँचत माथा दुखाए लागल, का कइल जाओ रामधनी कहे लगले। एने मास्टरनी जी पढ़ाई आगे के करे खाती निमन निमन सपना देखा देले रहली, दूसर दने गांव के भाई भवधी अलगे डेरवावत बाड़े, का करी ना करी तनिको बुझाते नइखे। एह सोच के रामधनी अपन कपार पर हाथ ध के बैठ गईले। ऐसन बात सुनते सुनैना के माई खिसिया उठली, देखी जी सब हमार लइकियन के आगे बढ़त देख के जरत बाड़े स, हमार सुनैनी सब काम में सुघड़ बिया, एकरे के त देख के सूरज भी मन लगा के पढ़े लागल। देखत नहीं खी न त गांव के लइकवन के साथे दिन रात खेलते खेलते अपन समय बितावत रहे, अब देखी सुनैनी के पढ़ाई से कतना सीख गइल बा। ई त बात ठीक कहतरू, यही से त हम यही कहल चाहम कि हमनी के कोनो

हालत में रह के भले ही ज्यादा मेहनत मजूरी करम जा, बाकी एकरा के आगे जरूर पढ़ाई जा। हमार तो इहे विचार ना फैसला बा। हम तो अपन मलकिनी आ मास्टरनी जी के बात के अचरा में गिरह पार लेले बानी। केहू तरह से एकरा के आगे जरूर पढ़ाई। बस बस माई या बाबूजी रौरा लोगिन एक बेर हमरा के पढ़ा दीही, फेर देखम हमार कमाल। जी जान से हमहू खूब पढ़म लिखम, देखम यही गांव समाज रौरा लोगिन के कैसे तरहत्थी पे बैठावे लागी। देखत रहम आगे भी परीक्षा में हम फर्स्ट मार के सबका सामने अपन रिजल्ट दिखा देम। हाँ बाबूजी, दीदी के पढ़ाई मत रोकी, कसहू सब सुन के आगे बढ़ चले के बा। ई सब बात के हमनी के पाछा छोड़ दिहल जा, एक बार निकल जाइन जा, फिर देखम यही लोगिन केह तरह से बात पलटे लगी हैं। हाँ तू सब लोग के बात से हमहू सहमत बानी, कह तो देनी पढ़ाई कोनो कीमत पे अब ना रोकाई। पढ़ाई तोहनी के मन लगा के करस। रामधनी के ऐसन कहते पूरा परिवार खुश हो उठल। समय के साथे साथे सुनैना गांव जवार में अधिका नंबर से पास हो गईली। वाह, चारों तरफ से बहबही होखे लागल। ओह साथे साथे एगो सरकारी नौकरी भी पास कर गईली। हई देख ई लैकिया के कतना मेहनती बिया दादा, अपन औकात से बढ़ के ई काम कर देलस। बस घर के दिन आ दशा सुधरे लागल, यही जैसे दिन पलट गई। माटी खपड़ा के घर पक्का के बने लागल आ पढ़ाई भी साथे साथे ओकर चलत रहल। आईए के साथे साथे उ स्नातक के डिग्री भी ले लेली आ सौंसे गांव में हलचल पड़ गई। जब सुनैना बहुते नीमन नौकरी फेर से दूसर पा गई, ओकरा के आगे बढ़त देख के गांव में बिरादरी के औरू लड़कियन के भी पढ़ाई चालू हो गई रहे। सब के दीन दशा में सुधार हो गई। चारों तरफ पढ़े खाती सुगबुगाहट बढ़त चल गई रहे। सुनैना के भाई भी अग्निवीर तबले बन के अपन नाम के साथे साथे सम्मान समाज में बढ़ा लिहले। अब ई दोनों भाई बहिन तो सौंसे गांव समाज में सबका जुबान पे बहुत नीमन से चढ़ गईले। रहन सहन के साथे साथे सामाजिक पारिवारिक सब कुछ बदले लागल। एक दिन अवसर पाके सुनैना के माई कहे लगली कि ए जी, अब सही समय आ गइल बा। अब हमनी के अपन बेटी के बर ढूंढी जा। रौरा से जवन लोग सुनैना के बियाह खातिर लड़का बतावत रहे ओकर पता ले ली ही आ बातचीत अब शादी के बढ़ावल शुरू करी। अब उस समय आ गइल बा जेकर सुगबुगाहट आज से 5 बरिस पहले शुरू हो गई रहे। ठीके कहत बाड़ू हो, हम काल्हे सुनैना के बियाह खातिर चर्चा चलावत बानी। बाकी एक बात बा, लैकन वालन से यहू पूछे पड़ी कि उ लोग नौकरी ब्याह के बाद नानू छोड़वा दीही। का बात करतनी, ई सब सुन के सुनैना के भाई कहे लगले, अब सब केहू पढ़ल लिखल बा आ कमासूत मेहरारू चाहत बा, काहे कि घर में खाली बैठ के कोनो लड़की ना रह सकेले। पढ़ल लिखल लड़की अपन मान सम्मान हमेशा बढ़ावे के सोची। घर के काम में सहायता करे खाती एक से एक बढ़ के अब मशीन आ गई बा। जैसे अब झाड़ू पोछा हो जाता, कोना कोना बाहर सहार देता, पोछियो देता, अब बर्तन बासन करे खाती भी बहुत सुंदर मशीन आ गई बा। कपड़ा लता तो कब से फिंचा जात रहे, यही ना सरकारी हो खो चाहे प्राइवेट, सब ऑफिस में मातृत्व अवकाश भी मिलत बा। ऐसे अब कोनो तरह के दिक्कत नहीं खे। सब लड़की यही कारण से ब्याह के बादो अपन नौकरी चाकरी कल चाहतरी सन आ ओकर साथ ओकर परिवार वाला भी देता। तब भला केहू लड़की काहे नौकरी छोड़ी या ओकर परिवार वाला काहे घरे बैठे के कही। यही ना बाबूजी, हमारे गो अधिकारी तो सुनैना दीदी से इतना प्रभावित बाड़े कि बिना दान दहेज के ब्याह करे खातिर तैयार बाड़े। आए ई बात तू अबले काहे ना कहला, हम इंतजार करत रहनी, जैसे मौका मिलल वैसे ही हम रोरा के बतावे लगनी। उनका परिवार में जात पात के भी कोनो चर्चा नहीं खे। उ लोग के सोच विचार बहुते ऊंचा बा। हम

बाप रोरा लोगिन से कहे वाला रहनी, काहे कि पहले इनकर घर परिवार से हमनी के मिल लिहल जाओ, सब सोच समझ के देख लिहल जाओ, हमनी के लायक होखी, उ लोग हमनी के पसंद करी, तब नु बात बढ़ावल जाई। बाह रे बबुआ, ते कतना होशियार हो गइल बाड़े, ये सब पढ़ाइये के नतीजा ह। देख, ये सब सुन के सुनैना भी अपन सहमति दिहली आ कहे लगली कि बातचीत करे से अतना तो भाई तहरा पता चलिए गइल बा कि हमनी के जवन स्थिति से मेहनत करके उबरल बानी जा, ओह तरह से उ लैका के सोच कतना मायने राखत बा। हाँ दीदी, बहुते दिन से हम मने मने ठोक बजा के इ लोग के पसंद क के रखले रहनी है। देख, तुहू एक बार बात कर ल, बातचीत के बढ़ावे पे सूरज आ सुनैना के, यहाँ तक कि दोनों परिवार में रजत के बुद्धि व्यवहार

हमने के कथा पाठ सुनत रहीं जा। कथाकार रहनी पूनम आनंद, तो ये कथा पाठ खाते यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कहते नहीं। और जैसे इनके रोज सुबह से वादा के लिए रहें कि भाई गीत हमने के सुनब जा, तो आज कलाकार साधु शरण सिंह और साथी लोग से हमने के एक और गीत सुनल जाओ।

के बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसन कि कार्यक्रम के अंत में हमने के कुछ पहनावा ओढ़ावा पे बात करेला, खान पान पे बात करेला, तो आज बात करब कि भाई पहले के जमाना में लोग जोन बात धोती कुर्ता पहनत रहे और गमछा लेते रहे, ओकर जवाबे कुछ और ही बा। चूंकि आज भी लोग ओ चीज के आज अपना रहल बा, तो चलिए अपनावे के भी चाहिए। चूंकि पुरान जमाना में जो चीज हमने के पहरावा बा ओकरा के फिर से आज शादी ब्याह में देखी, चाहे ऐसे भी जे कि आराम दे हो के धोती पहनल लोग छोड़ दिले रहे, लेकिन अब ओकरा के अपना रहल बा। तो चलिए बहुत अच्छा बात बा। ये कार्यक्रम रउआ सब के कैसन लागेला, रउआ अपन विचार लिख भेजी हमने के पता बा। कार्यक्रम आरती द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना, पिन कोड बा 800001। हमने के ईमेल आईडी बा feedback@aiarpatna@gmail.com। तो हमारा समय और आता, रउआ सब से विदा चाहते हैं। संगीता एक दी विदा, सबके ओके प्रणाम।

अभी आपने भोजपुरी कार्यक्रम आरती सुना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, ये जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:20 पर हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

शाम 6:30 पर ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल होगा और 7 बजे हम चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की। शाम 7:30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे और 7:47 पर जिले की हलचल। कर 52 मिनट पर सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगे समर्थ नाहर, इनके स्वर में सुनेंगे आप कुछ गजल। 7:50 का आनंद आप ले सकेंगे फिर से पुनः 8:30 पर। आठ बजे फिल्म संगीत। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू समाचार खबरें। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सोमवार से संगीत सभा। रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे और 11 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे।

श्रोता, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म में दिल तो पागल है का ये गाना। इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी उत्तम सिंह ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अभिजीत और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म बादशाह में, समीर के बोल और अनु मलिक का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो

0: हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आप कुछ
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् सोमनाथ अमृत पर्व न केवलं भूतकालस्य उत्सवः अस्ति, अपितु आगामि सहस्रवर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणासोत्रो भविष्यति। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्यसर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। केन्द्र प्रशासनेन 25-2000 वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। सहैव अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचलप्रदेश क्रिकेट् संघ क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स् अथ च दिल्ली कैपिटल्स् दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गुजरातराज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75 वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपितु आगामि सहस्रवर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: राष्ट्रिय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणुत्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: पूर्वाह्णे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयः स्वीकृताः। मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी पञ्चचत्वारिंशत्

0: त्रिंशत् दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन 25-उत्तर-2000 विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियम वीबीजी रामजी इति अधिसूचित। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपलवर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।

आधार कार्ड बनाबे वाला गिरोह खुला।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: प्रणाम सोमा दीदी।
1: नमस्कार निमिषा बहन। और निमिषा बहन,
0: हाँ
1: जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है
0: हाँ
1: तो मन कितना खुश रहता है।
0: यस
1: अच्छा अच्छा होने के बाद अगर घर में ही कुछ अच्छा काम हो रहा है,
0: हाँ
1: कुछ अच्छा काम सोचते हैं या उसमें सफलता मिलती है तो मन भी खुश रहता है। परिवार के हर लोगों में भी एक खुशी का भाव
0: एकदम
1: रहता है, लहर। उसी तरह जब देश में कुछ अच्छा होता है, हम लोगों के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए, जन जन के लिए, यार एक तरह से कह सकते हैं कि अगर राष्ट्र हित में कोई काम होता है
0: हाँ
1: जिससे सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, तो कितना मन खुश हो जाता
0: एकदम दीदी,
1: है ना?
0: हमने के देश आत्मनिर्भर बनल रहे, इससे बढ़ के का बात हो सके है।
1: एकदम।
0: और हमने के देश हमेशा अपन आर्थिक स्थिति में मजबूत रहे और हमने के देश आगे बढ़
1: आगे
0: सके,
1: बढ़े,
0: ये सबके
1: बिल्कुल
0: मनोकामना रहे।
1: सही बात है। जब देश आगे बढ़ेगा तो देश के हर एक नागरिक आगे बढ़ेंगे,
0: एकदम
1: और जो देश की शक्ति होती है ना, वो केवल सरकार तक ही नहीं सीमित होती है,
0: एकदम
1: ये जन जन के सहयोग से और संस्कार से बनती है देश की शक्ति। और भारत के, अभी आपने भी पढ़ा होगा और हम लोगों ने भी पढ़ा है और देख रहे हैं कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, समय समय पर देशवासियों से ऐसी अपील वो करते रहते हैं जिसका उद्देश्य जो होता है, जो राष्ट्रहित से जुड़ा होता है, आत्मनिर्भरता से जुड़ा होता है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, इन सब मुद्दे को लेकर लगातार देश में काम हो रहे हैं।
0: हाँ दीदी, लेकिन देखिए अभी जे पश्चिम एशिया में बढ़ रहा तनाव है और
1: हाँ
0: वैश्विक आर्थिक अस्थिरता है, एक बीच में देश के विकास और आर्थिक मजबूती ला हमने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 गो हमने के अपील कर दी, जो है राष्ट्र प्रथम के आह्वान के रूप में, मतलब हमने के देश के अपन देश के सबसे पहले चुने के चाहिए। और एक 7 गो अपील करती जरा में है कि वर्क फ्रॉम होम, ई में कहा है कि एक बढ़ावा देवा जाए जरा से ईंधन बचावे के, यातायात कम करे के और कंपनी और कर्मचारी के वर्क फ्रॉम होम के विकल्प अपनावे के अपील कर जाए।
1: बिल्कुल, अब सही बात है, आपने ये बात कही और हम सब जानते भी हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागरिकों से ये अपील की है। 7 महत्वपूर्ण अपीलें जो देश की आर्थिक स्थिति को, पर्यावरण को और स्वदेशी भावना को मजबूत बनाने में ये सहायक हो सकती है, और जिसमें वर्क फ्रॉम होम, इसमें इसलिए भी इसे प्राथमिकता दी गई है वर्क फ्रॉम होम की, ताकि जो पेट्रोल और डीजल की इतनी खपत हो रही है
0: हाँ
1: जिससे हमारे देश में इसकी कमी हो गई है, तो ऐसे में लोग अगर घर से काम करेंगे, घर में बैठकर ऑफिस का काम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। साथ ही साथ ट्रैफिक, आजकल हम लोग जब सड़क पर जाते हैं कितना ट्रैफिक हो जाता है,
0: हाँ
1: जहां हमें 10 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां घंटों लग जाते हैं,
0: हाँ
1: तो ट्रैफिक, और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और साथ ही साथ हम सबके समय में भी बचत होगी।
0: एकदम। और यही के संगे ईंधन के बचत, जैसे कि पेट्रोल के बात कर ला, कि
1: हाँ
0: ईंधन के बचत ला भी खुद के मोटर गाड़ी के जगह पे हमने के चाचा का

0: पे कार्पुलिंग करे के चाहिए। सार्वजनिक जो परिवहन है
1: हाँ,
0: ओकरा के इस्तेमाल
1: इसके
0: करे के चाहिए,
1: इस्तेमाल बिल्कुल।
0: काहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमने के बहुत तरह से ईंधन के बचा सके ही, पेट्रोल बचा सके ही, डीजल बचा सके ही।
1: एकदम।
0: और देखा संगे संगे हमने के जो विदेशी मुद्रा है वो भी बच सके है, तो हमने के विदेशी मुद्रा बचावे ला डीजल के खपत कम करे के चाहिए और पार्सल के भी रेल द्वारा ही भेजे के चाहिए।
1: एकदम। और एक और अपील की गई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कि 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की।
0: हाँ
1: भारत में सोने का अधिकतर जो हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है, जिससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है, और यदि लोग कुछ समय तक सोना खरीदना कम करें तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
0: हाँ देखा दीदी, हमने के घर घर में हर औरतन के पास सोना है,
1: हाँ
0: लेकिन अभी थोड़ा
1: एकदम।
0: सा अपन इच्छा के तहत दबाथिन और
1: दबाना।
0: अपन देश के प्रति अपन अजागरूक होथिन। और संगे संगे दीदी घर में जो रसोई में हमने के खाद्य तेल जो होवे है ओकरा के भी खपत कम करेला है, क्या कि खाद्य तेल जो है हमने के देश में आयात करल जा है,
1: सही बात
0: हमने के
1: है।
0: जितना जरूरत है उतना हमने के उत्पादन ना होवे है और ये हमने के विदेशों से आवे है, तो
1: एकदम।
0: एकरा से कहा हुआ कि हमने की विदेशी मुद्रा के खपत हो जाए, तो यही ला हमने के खाद्य तेल पे आत्मनिर्भरता बनावे ला हमने के कम से कम उपयोग करे के है,
1: हाँ,
0: जेकरा से एकर बचत हमने कर सके और विदेशी मुद्रा के खपत होवे से बचा सके।
1: और सबसे बड़ी बात है कि खाद्य तेल का अगर हम लोग कम उपयोग करेंगे निमिषा बहन,
0: हाँ
1: तो ये अधिक तेल का सेवन जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
0: हाँ
1: भी
0: ये तो
1: होता
0: सही
1: है।
0: कहा।
1: हाँ, और कम तेल का उपयोग करने से हम स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकते हैं, और इससे हमारा जो तेल आयात पर जो निर्भरता है वो उसे भी हम लोग घटा सकते हैं। एक और अपील हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है कि किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग कम
0: हाँ
1: कर प्राकृतिक खेती
0: खेती
1: को
0: के
1: अपनाने की जरूरत है, और प्राकृतिक खेती से मिट्टी की जो उर्वरता है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बनी रहती है, और साथ ही साथ पर्यावरण को जो है उसको
0: हाँ
1: नुकसान पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचता
0: और
1: है।
0: एक संगे संगे हमने का स्वास्थ्य भी निम्न रहे
1: हाँ,
0: हैं
1: और किसानों की
0: देखा।
1: जो लागत होती है
0: हाँ
1: वो भी घटेगी,
0: हाँ
1: और
0: एकदम
1: लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ भी
0: एकदम
1: मिलेगा
0: एकदम,
1: खाने
0: हम लोग जैविक खाद के उपयोग कर सके ही,
1: को।
0: प्राकृतिक
1: एकदम
0: खेती अपना सके ही,
1: एकदम।
0: तो इस तरह से हमने आत्मनिर्भर बन सके ही खेती बाड़ी में भी।
1: हाँ
0: और सबसे जरूरी कि हमने की एक और अपील है प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी अपनावे के, जे कि वोकल फॉर लोकल,
1: लोकल। हाँ
0: तो स्वदेशी अपनाथिन भारतीय उत्पाद मतलब मेड इन इंडिया, मतलब हमने के देश में जो बनल सामान है ओकरे के खरीदथिन, विदेशी ब्रांड से दूर रहथिन, एकरा उपयोग कम से कम करथिन और एकरा बाजार में खरीदे से बचथिन।
1: एकदम। और इससे क्या हुआ कि वोकल फॉर लोकल से, जो इस भावना से देश के जो छोटे उद्योग है
0: हाँ
1: और जो व्यापारी है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, और साथ ही साथ हमारा जो भारत है आत्मनिर्भर भी बनेगा,
0: एकदम
1: और कह सकते हैं कि मिलावटी चीजों को क्यों अपनाना
0: हाँ
1: जब हमारे देश में इतना सब कुछ है। हाँ,
0: एकदम
1: ये इतना सुंदर प्राकृतिक संसाधन है, हमारे यहाँ के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, कपड़े हैं, तो हम उसे ही अपनाएं, और इससे विदेशी वस्तुओं का भी उपयोग हम कम करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को
0: हाँ
1: अपनाएंगे।
0: और एक और अपील जो सातवां अपील है, विदेशी यात्रा से परहेज, मतलब अगर बहुत जरूरत है तभी हमने के बाहर जाए के चाहिए, ना
1: हाँ,
0: तो कम से कम हमने के बाहर निकल, क्योंकि हमने के देश में ही देखा कितना घूमने के
1: सुंदर
0: जगह है,
1: सुंदर जगह है।
0: देखे के
1: हाँ,
0: जगह है, कहीं चल जा उत्तर से दक्षिण तक हर जगह
1: हर जगह
0: पर्यटक स्थल है,
1: एकदम।
0: चाहे कश्मीर में जाथिन चाहे
1: कश्मीर से
0: दक्षिण
1: कन्याकुमारी,
0: एकदम
1: हाँ, हर एक जगह उसकी
0: हाँ
1: अपनी
0: कोई भी
1: सुंदरता है, उसकी
0: एकदम
1: अपनी खासियत है। और इसी पर एक बात कहेंगे
0: हाँ
1: निमिषा
0: हाँ
1: बहन कि अभी इन दिनों मैं बाहर गई हुई थी, सिक्किम घूमने गई
0: अच्छा
1: थी, और वहां जब सिक्किम घूमने घूमने वहां देखा तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों स्विट्जरलैंड जाने की बात करते हैं।
0: हाँ
1: हमारा हमारे यहाँ इतना खूबसूरत स्विट्जरलैंड है,
0: एकदम
1: वही बर्फ है, वही प्राकृतिक इतनी सुंदर दृश्य है, और अगर सिक्किम का जो नॉर्थ सिक्किम की तरफ अगर
0: हाँ
1: जाएंगे तो सही बात है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग पिछले दिनों स्विट्जरलैंड गए थे,
0: हाँ
1: लेकिन स्विट्जरलैंड जब घूम के आए और यहाँ हम लोग सिक्किम में आए तो मुझे लगा अरे स्विट्जरलैंड जाकर
0: तो
1: कोई
0: दीदी ये
1: फायदा नहीं।
0: बतावा कि कमरे भाड़ा में हम इतना निमन
1: निमन
0: स्विट्जरलैंड घूम
1: घूम
0: लेंगी।
1: क्या, सही
0: हाँ
1: बात है।
0: हम फोटो भी देख ली दीदी, बड़ा सुंदर सुंदर
1: हाँ,
0: फोटो
1: अरे
0: सब
1: तो
0: देखा।
1: इतना सुंदर
0: हाँ
1: सुंदर जगह है, हमारे बिहार में इतने सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल है
0: एकदम
1: कि लोग विदेशों से यहाँ लोग घूमने
0: घूमे
1: आते हैं,
0: आवे
1: तो इस मामले में तो हम लोग धनी हैं। तो
0: एकदम
1: विदेशी यात्रा को कम करें, अपने अपने बिहार, अपने पूरे देश के पर्यटन
0: हाँ
1: स्थल को घूमें, और इससे क्या होगा कि हमारे भारतीय पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, होगा और साथ ही साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है निमिषा बहन,

0: वो
1: हाँ
0: भी
1: मजबूत
0: मजबूत
1: होता
0: होगी,
1: है
0: क्योंकि इससे हम लोग को आर्थिक लाभ भी होगा।
1: एकदम,
0: पर्यटक अगर यहाँ
1: मतलब घर
0: आएंगे
1: के पैसा घर में
0: घर में ही
1: रहते और
0: रहेंगे
1: बाहर के पैसा भी बचल रहते,
0: बचा
1: मतलब घूमथिन भारत, देखथिन भारत और
0: भारत
1: बढ़ाथिन भारतीय भारत,
0: एकदम। तो
1: हम
0: हम
1: ही देश
0: लोग
1: के
0: के
1: बना
0: हाँ
1: दे रहे हैं।
0: सही बात है। तो इसमें माननीय
1: हाँ
0: प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये एक मार्ग है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इस राष्ट्र निर्माण में हर एक को साझेदारी और हर एक को मतलब जुड़ना होगा। और यदि प्रत्येक भारतीय इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे निमिषा बहन, तो
1: हाँ
0: भारत जो है हमारा भारत
1: हाँ
0: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से बहुत ही सशक्त बन सकता है।
1: एकदम, मतलब कि वैश्विक संकट के दौरान हमने के देश एकदम सुरक्षित रहते, और जैसे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भरता
0: बन
1: के लक्ष्य के प्राप्त करते
0: बिल्कुल। तो
1: एकदम।
0: स्वदेशी
1: हाँ
0: अपनाए,
1: हाँ
0: प्रकृति बचाए और
1: और
0: मिलकर नया
1: खुशियाँ
0: भारत बनाए।
1: एकदम।
0: तो चलिए इसी बात पर हम लोग कुछ गीत सुन ले। हमारे कलाकार हैं शिवचरण प्रसाद जी, सुनते हैं ये लोक भजन।
1: चल सुना जाए।

0: हम लोग सुन रहे थे शिव शरण प्रसाद से ये लोक भजन। और निमिषा बहन, अब समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: चला सुनल जाए।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बुनियाद।
1: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। बुनियाद कार्यक्रम का समय हो गया है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह का बुनियाद लेकर। वर्षों से ये कार्यक्रम आपके लिए राजेश लेकर आ रहा है और बातें करते हैं इसमें युवाओं, आपसे, आपके माता पिता से, छोटे छोटे जो भाई बहन है वो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उन्हें जीवन में क्या करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दो तीन बातें मुख्य रूप से कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, टेक्निकल पढ़ाई के किसी भी कोर्स को चुनिए अपनी मर्जी से और फिर ध्यान लगाकर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते ही संभवतः आपको रोजगार मिल जाए या पास आउट होने के बाद, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि अगर किसी नेशनल कंपटीशन को आपने कम्पीट नहीं किया है तो बाहर, बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में, झारखंड में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। और आपको बताएं कि नेशनल कंपटीशन से भी अगर जो आप कम्पीट करते हैं तो बिहार में भी उसके कॉलेजेस हैं। मसलन अगर आपने क्लैट को क्रैक किया तो चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ जो ऑटोनोमस है वो है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है जिसमें मेडिकल से लेकर पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मेसी की बात करें, कुछ भी करें यहाँ पढ़ाई होती है। बायोलॉजी से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, इसके अलावे अगर जो आप लॉ करना चाहें 5 ईयर या फिर 3 ईयर, या जर्नलिज्म करना चाहें या मैनेजमेंट करना चाहें, या अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, किताबों से शौक है, तो आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं। नोट कीजिए वहां का नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002। टोल फ्री नंबर है 1800121001, और एक वेबसाइट है www.gnsu.ac.in। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है बीएड स्पेशल एजुकेशन। हाँ, जैसे बीएड होता है ना, बीएड होता है उसी तरीके से, उससे भी ऊपर का कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन। 9431899002 पर पता कर लें। जी हाँ, इसके अलावे ढेर सारे कोर्सेज हैं, जो मर्जी आए चुन ले। आज मैंने किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया, डीन को नहीं बुलाया, या फिर रजिस्ट्रार साहब को नहीं बुलाया, या वाइस चांसलर को भी हमने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नहीं बुलाया। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट, जिसमें पूनम है, सिल्की है, यशवी है, आराधना शाही है, जागृति है, या फिर पलक है, बहुत सारे लोग हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना करियर क्यों चुना है, क्या इन्हें लगता है कि इसकी पढ़ाई कर लें तो रोजगार मिल जाएगा, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का जो कॉलेजेस है जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार में, उसमें क्या क्या है, क्या ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इनके लिए फायदेमंद है, और आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसी है। इसके लिए सबसे पहले बुलाते हैं पूनम।

0: का, आपको आ जाइए, माइक्रोफोन आपका और सारे लिसनर्स आपके हैं।
1: नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता बीबीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने इसलिए बीबीए चूज किया क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने जब मैंने अपने घर से पास में जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए देखने के लिए ढूंढा तो मुझे पता चला कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट। तो जब मैंने यहाँ पे आया पढ़ा तो मेरे लिए फुल्ली सैटिस्फाइड थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई मिले क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट, फैकल्टी इतने सपोर्टिव है। अगर आप कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर कुछ है तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टी सारे स्ट्रीम्स को फुल्ली अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको प्रॉब्लम होता है कि वो आर्ट्स से ह्यूमैनिटी से हैं तो उन्हें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो या आगे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें काफ़ी अच्छा स्कोप और काफ़ी अच्छा गाइड किया जाता है। ऑल दो इसके साथ साथ उन्हें स्किल्स का भी आगे अपॉर्चुनिटी है और वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। हमारी और ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे जाती है उन्हें और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जिन्हें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो DRCC से भी अपना यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं मैनेजमेंट करना तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बेस्ट है।
0: वाह, क्या बात है पूनम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सिल्की, आप क्या कहना चाहिएगा?
2: नमस्कार, मैं सिल्की गुप्ता गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की MBA की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ स्टडी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ स्टडी पे ही नहीं बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ों को मिलाकर एक ओवरऑल अच्छे पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। मैनेजमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि हमें कॉरपोरेट में इस चीज़ों पे काम करना होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्टडी ही नहीं स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है और हमारे यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ को सही करने के लिए मेंटर मेंटीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि किसी भी बच्चे को अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तो यहाँ आकर अपना करियर बना लिए, आप कब आ रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारा नंबर नोट कर लीजिए जहां आप जानकारियां ले सकते हैं 9431899002 9431899002 और एक टोल फ्री है 1800 121 0051 और www.gnsu.ac.in। जी हाँ, ये वेबसाइट का पता है। इसके अलावे आइए बातें सुनते हैं यशवी से जो बीबीए की स्टूडेंट है।
3: नमस्कार, मैं यशवी हूँ, मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डाउट हो तो मेंटर मेंटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है हमारे पढ़ने के लिए, इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाता है, हॉस्टल्स की सुविधा भी है। पैसे की बात है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। और आप अभी तक घर पे बैठे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए।
0: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया यशवी कि आपने क्यों बीबीए लिया और यहाँ क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराधना शाही है हमारे साथ।

0: ने क्यों बीबीए लिया और यहाँ क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराधना साही है हमारे साथ। आराधना, अपनी बात बताइए सुनने वालों को, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, प्रणाम। मैं आराधना साही गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जहाँ पे हम लोगों को बस थ्योरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। एंड जब मैं यहाँ पे आई अपना एजुकेशन गेन करने के लिए, तब मुझे यहाँ पे ये फील हुआ कि हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे बस थ्योरेटिकल नॉलेज पे कभी फोकस नहीं करते हैं। ये लोग हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट 12 पास आउट किया, एंड अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, अच्छे से हम लोग ग्रो करें, एंड अगर आप एक लड़की हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा घर दूर है, मुझे हॉस्टल चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल में। एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कैसे एजुकेशन गेन करेंगे, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको लोन मिलेगा एंड आप उसके हेल्प से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप जब यहाँ पे आओगे, आपको हमारा यूनिवर्सिटी मेक श्योर करता है कि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर में ग्रो करो। ये कॉलेज मुझे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करवाया है। एंड मैं आज जहाँ भी हूँ, एक अच्छे प्लेस पे हूँ एंड अपने कॉलेज की वजह से हूँ, तो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर आप अच्छे अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो तो आप जरूर आइए हमारे कॉलेज में। थैंक यू सो मच।
0: आराधना शाही ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है और अब बारी है जागृति की। पलक, इंतजार कीजिए आप, जागृति बीबीए की स्टूडेंट है। जागृति, क्या कहना चाहिएगा आप?
2: नमस्कार, मैं जागृति कुमारी बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेमेस्टर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैंने फर्स्ट डे पे आया तो मैंने जाना कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली थे। ये हमारे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट मिला। यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है। जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो भी अपना ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग। जो फैकल्टीज की भी यहाँ पे बहुत सुविधा है, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है जिसके द्वारा से हम स्टूडेंट आगे से आगे बढ़ सके, प्लेसमेंट के थ्रू आगे बढ़ सके और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, युवाओं ध्यान दीजिएगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय लगातार ऐसे कोर्सेज की खोज करता रहता है जिसमें आपके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं हों। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि बीएड तो था ही, बीएड स्पेशल एजुकेशन लेके आया था और अब तीन कोर्सेज और नए आए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आने वाले सोमवार को मिस नहीं करना है, जिसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स आपके लिए है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ यही कोर्स है। ये तीन नए कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगले एपिसोड में यानी आने वाले सोमवार में एक एक करके हम इसके विषय में जानकारी देंगे और फिर आपके कोई सवाल होंगे तो फिर दोबारा भी बताएंगे। तो बस ये हमारा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। अब आपकी बारी है, इसके लिए आप डायल कर सकते हैं 9431899002 और टोल फ्री नंबर है 1800121005118001211

0: 0051 और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। थैंक यू कहना चाहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास को कि जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम लेकर आने को आपके राजेश को मौका दिया और जानकारियां आप तक पहुंची। तो चलते हैं, अगले सोमवार को फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: हाँ तो दीदी, अभी हमने सब सुन रहे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और ये के संग हमने के चौपाल के समय संपन्न होले और हमने सब आगू बातचीत करवे खेती गृहस्थी में।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: तो निमिषा बहन, समय है खेती गृहस्थी का, तो हम लोग खेती संबंधित बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
5: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
6: प्यारे श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ दोस्तों, 8826224477। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं, पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है, उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है, इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा।

हम विवाह बंधन में बंधते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में गम में डूब जाते हैं, पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी ऐना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम उड़ान शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

दोस्तों, देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भागकर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया। उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं। पर बस यही नहीं करना है दोस्तों, जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, विचार, सवाल या आपके परामर्श हमें लिख सकते हैं। तो एक बार फिर हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर याद रखिए, अपनी आशा के दामन को पकड़ के रखिए, क्योंकि जिंदगी में आशा ही हमें आगे लेके जाती है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: दीदी अभी हमने सब सुन रही हल प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और ये के बाद हमने के समय है खेती गृहस्थी के। और देखा दीदी खेती गृहस्थी की बात कही तो हमने के खेती पे जलवायु के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कहे कि जलवायु ऐसा चीज है जिकरा में हमने का अगर फिर बदल हो जाए तो कृषि के प्रभावित कर दे है
1: एकदम
0: ज्यादा।
1: कृषि के क्या साथ साथ हर हर हम लोग को भी प्रभावित करता है। अभी आपको याद होगा पिछले 2 दिन पहले जो यहाँ पर इतना अंधर तूफान आया, कितने जगह पेड़ गिर गए, कितने लोगों को इससे नुकसान भी हुआ। तो अभी का जो समय है वो तो बारिश का समय है नहीं, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा ये तो आप समझ ही रही होंगी।
0: मौसम के बदले से हमने के जो फसल है समय की सीमा बदल जाए है, आज एक उपज में
1: कमी आ जाए। तो जलवायु परिवर्तन का तो प्रभाव पड़ता ही है कृषि पर, और हमारी जो धरती है ये भी कहती है कि धरती की यही पुकार है कि प्रकृति को बचाना भी हमारा अधिकार है। और आज आज के समय की बात करें तो पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन गया है, और पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, अनियमित वर्षा जो हो रही है, कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है, और कभी मौसम के जो बदलते स्वरूप है, तो इसे मानव जीवन को तो गहराई से प्रभावित किया है, साथ ही साथ हमारे कृषि कार्य को भी बहुत प्रभावित किया जा रहा है।
0: दीदी और हमने के देश के 60% आबादी के जीविका के साधन तो हमने के खेती बाड़ी है। अगर एकरा में मौसम बदलाव आ जाए, अनियमित मानसून आ जाए, और सुखार रहे या ज्यादा बाढ़ रहे तो हमने के खेती बाड़ी के प्रभावित करे है। और एकरा से कहबे कि हमने के पैदावार में भी बहुत गिरावट आवे है, जैसे कि गेहूं चावल मक्का जैसे फसल के फसल जो है वे प्रभावित हो जाए। एकरा में तापमान के वृद्धि से हमने के चावल गेहूं जैसे मुख्य फसल में 20% की कमी हो सके है। संगे संगे अगर कहा जाए कि 2050 तक आ 2080 तक, मतलब साल 2080 में पैदावार में 47% तक की गिरावट आ सके के संभावना भी बताई गई है।
1: लेकिन इससे पहले निमिषा बहन, हमें तो ये जान लेना जरूरी होगा, हर एक को समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है। हाँ, और कहीं ना कहीं इन कारणों में हमारा भी कहीं कोई उसमें भागीदारी रहता ही है कि अंधाधुंध जो वनों की कटाई हो रही है, अच्छे प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण क्यों हो रहा है, इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, उद्योगों से जो फैक्ट्री से इतना धुआं निकल रहा है, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और ये जो हमारा मौसम चक्र है वो असंतुलित हो गया है।
0: जीवन पेड़ पौधा भी खत्म हो रही है, हमने बचा भी न रही है, और जो हमने वृक्षारोपण करे के चाहे उसमें भी बहुत मात्रा में कमी है।
1: बिल्कुल, तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वर्षा में अनियमितता होने से, पहले वर्षा निश्चित समय पर होती थी, लेकिन अब क्या है, कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी सूखा पड़ता है, इससे फसलों की बुआई और उत्पादन भी प्रभावित होता है। और सूखा और बाढ़ जैसे कई क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा रहता है, जबकि कुछ स्थानों जो स्थान है उसमें अचानक बाढ़ आ जाती है, तो दोनों स्थितियों में किसान की जो फसल है उसको भारी नुकसान पहुंचता है।
0: दीदी देखिए, अगर हमने की जलवायु गर्म रहते तो गर्म और नमी वाले मौसम में कीटों के प्रजनन दर भी बढ़ जाए, फसल के ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए
1: एकदम।
0: और ये मृदा और जल संसाधन में

0: प्रभावित करे है, मट्टी के कटाव हो जाए है, लवणीकरण होवे है और मरुस्थलीकरण मतलब कि सुखार हो जाए,
1: सुखार होता है बिल्कुल।
0: ग्लेशियर पिघले से भविष्य में सिंचाई और पानी की उपलब्धता में भी हमनी के कमी आ सके है।
1: सही बात है। तापमान में वृद्धि होने से अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं, धान और जो अन्य फसल है उसकी उपज कम हो जाती है और अधिक तापमान मिट्टी की जो नमी है उसको कम कर देता है। पशुपालन भी प्रभावित होता है, गर्मी बढ़ने से पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और दूध उत्पादन कम हो जाता है जिससे पशुओं में बीमारियां बढ़ जाती है
0: और तो, पोषण में कमी भी आ जाए है, क्या कि बढ़ रहा CO2 जो गैस है ओकर असर के कारण चावल, मक्का, गेहूं जैसा अनाज में प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा भी घट रही है।
1: तो जरूरी है कि इन सब से कैसे हम लोग बचे, समाधान तो जरूरी है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए निमिषा बहन, अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए?
0: पेड़ लगाना चाहिए,
1: वृक्षारोपण करना चाहिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए,
0: वायु प्रदूषण से बचे के चाहिए और संगे संगे हमने के जो तेल है, हमने के जो ऊर्जा संसाधन है ओकरा के बचावे के चाहिए।
1: और सबसे जरूरी जैविक खेती अपनानी चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को अधिक से अधिक उनको जो हमारे आधुनिक तकनीक है उससे संबंधित और मौसम संबंधी उन्हें जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए।
0: अब तो नया नया तकनीक भी आ गई है जैसे टपक विधि, सब तरह से हमने के बहुत तरह की विधि है जिकरा अपना के हमने के अपना जलवायु के बढ़िया रख सके।
1: तो यदि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी किसान की मेहनत सफल होगी। तो चलिए इसी बात पर किसान भाइयों के लिए एक पूर्वी गीत हम सुनवाते हैं, कलाकार हैं शिवचरण प्रसाद।
0: चल सुना जाए।

0: शिवचरण प्रसाद से ही रहल पूर्वी गीत। तो इनका के ई गीत और सभी गीत ला बहुते बहुते धन्यवाद।
1: हाँ
0: और ये के संग दीदी हमनी के समय भी और रहल है और चले के
1: हाँ
0: समय हो गए
1: तो
0: तो
1: चले हम लोग।
0: प्रणाम सोमा दीदी।
1: नमस्कार निमिषा बहन।

0: अभी आपने ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी सुना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात।

संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार उपलब्ध है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का 30 दिनों में निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं है, वे सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
2: कोई यदि कष्ट में जा रहा है, उसके निष्पादन के लिए पोर्टल बनाया गया और शुभ नंबर है, 1100 नंबर डाला गया है, तो बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिले। ये ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी निकले, फिजिकल यदि दे सकते हैं तो उनको ऑर्डर कॉपी दे, लेकिन ऑनलाइन को ऑर्डर निकालकर उनको तुरंत भेजने का काम करे। और पंचायत में ये लगना है तो आम लोगों को इसका सुविधा मिल सके, ये सारी चीजों को हमको इंश्योर करना है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग पहल के तहत महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मंदिरी नाला सड़क का नामकरण नवीन किशोर सिन्हा पथ करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण और सुशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
2: कानून का राज है साथ में, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ।

0: विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते।
1: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पदभार ग्रहण किया। श्री सिन्हा ने कहा कि विभागीय योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने एग्री स्टैक परियोजना के तहत कल से 30 जून तक फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: पहली प्राथमिकता रहेगी पारदर्शिता के साथ काम हो, और कभी कभी शिकायतें मिलती है कि अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां जा रही है, कुछ हमारे पदाधिकारी भी उसमें संलिप्त रहते हैं, कुछ ऐसे माफिया भी संलिप्त रहते हैं, तो सबको मैं चेतावनी देता हूं कि वो सतर्क हो जाएं, जो गड़बड़ करेंगे उनको फिर वो बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी।
1: भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने आज बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की 5वीं बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने का संकल्प लेने की अपील की है।
3: देशवासियों से जो PM ने अपील की, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है, क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो EV खरीदें, मेट्रो से चले, बस से चले, और LPG और PNG के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं, अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं।
1: इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में अनुशासन बरतने का संकल्प लेना चाहिए।
4: वैश्विक समस्या है, सभी जगह पे दिक्कत हो रही है, हर देश में रेशनिंग का काम आज हो रहा है, उसी तरीके से रेशनिंग करने की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। कुछ जब समस्या आती है तो समय थोड़ा अनुशासित होकर अगर हम लोग समस्या को झेल जाते हैं तो फिर आने वाले समय के लिए बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था और बेहतर होकर उभरेगी और मजबूत होकर उभरेगी।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: इधर आइए, इधर
6: इधर,
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप

0: आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। नई दिल्ली के मुंडका पक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली की आज से शुरुआत हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। मगध महिला कॉलेज पटना के वार्षिकोत्सव उड़ान को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका का उल्लेख किया। श्री हसनैन ने छात्राओं से अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की अपील की। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित खटोरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
2: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरोली बालकरी से 10 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दरभंगा जिले के बहरी बाजार स्थित एक स्टूडियो में पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के जितना थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरवा गाँव से पुलिस और SSB की टीम ने 2 किलो 700 ग्राम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर 46 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। सारण में 2 और गया, मुंगेर तथा रोहतास जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस

0: तथा 45 दिन के LPG का भंडार उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए। इधर
2: इधर
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
4: सुपौल व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 समझौते के आधार पर मामलों के निष्पादन के लिए कुल 21 बेंच का गठन किया गया। इनमें सुपौल न्याय मंडल में 12 बेंच, वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 5 बेंच तथा ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए टाउन हॉल में 4 विशेष बेंच बनाई गई थी, जिसमें सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामलों सहित विभिन्न वादों का त्वरित और निःशुल्क निष्पादन किया गया। वहीं पक्षकारों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग परिसर में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। इधर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने बीते दिनों सुपौल जिले के निर्मली और वीरपुर अनुमंडल में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह सुपौल निरीक्षक न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह, जिलाधिकारी सावन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक शरद आर्य सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और माला पहनाकर स्वागत किया गया। नए न्यायालय भवनों के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को छोटे मोटे मामलों के लिए सुपौल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, इससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। विक्रमशिला पुल के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सुपौल के सरायगढ़ जंक्शन से देवगढ़ तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। समस्तीपुर मंडल द्वारा गाड़ी संख्या 05573 एवं 05574 सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ अनारक्षित विशेष ट्रेन का परिचालन 7 मई से शुरू किया है, जो 31 मई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। यह विशेष ट्रेन सुपौल सहरसा सिमरी बख्तियारपुर मानसी खगड़िया सबदलपुर मुंगेर सुल्तानगंज भागलपुर और बांका होते हुए देवघर तक जाएगी। बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों एवं जिले के विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गश्त बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव ने वीरपुर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक

0: दिशा निर्देश दिए। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है उस पर चर्चा की गई कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी शुरुआत करना है टारगेट लेकर। इसके अलावा उसके बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन था, और दूसरा था जो बीरपुर एयरपोर्ट बन रहा है इसका जमीन एक्विजिशन कैश स्टेटस है, और जब टर्मिनल बिल्डिंग कब शुरू होता ये होगा। इसके अलावा और जिले की जो अलग अलग विकासात्मक गतिविधियां थी उस पर और बॉर्डर संबंधी सब पर मस्ती।
1: जिले में रसोई गैस की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जिले की कुल 51 गैस एजेंसियों के पास लगभग 13,394 गैस सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन औसतन 5,601 घरेलू LPG सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निबंधन कार्यालय सुपौल में पदस्थापित अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके कार्यालय और किराए के मकान में छापेमारी की। जांच के दौरान EOU को अमरेंद्र कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में उनके पास लगभग 1,10,64,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जो उनकी आय से करीब 65.08% अधिक बताई जा रही है। EOU की टीम मामले से जुड़ी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है।
2: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रवि शंकर चौधरी।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें आइए सुने सामर्थ नाहर के स्वर में ये गजल।

0: radio@gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार थे समर्थ नाहर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी।

साधना सरगम की आवाज़ में अभी आपने सुना विश्वात्मा फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी के बोल और विजू शाह का संगीत। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल को अभी आपने सुना फिल्म आजा नस्ले में। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आइए सुने एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म है मैंने प्यार किया, गाने के बोल लिखे हैं अशद भोपाली ने और धुन तैयार की है राम लक्ष्मण ने।

अभिजीत और श्रेया घोषाल को अभी आपने सुना फिल्म ओम शांति ओम में, और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। संकट मोचन मिश्र के स्वर में हम सुनते हैं कुछ भजन।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार हैं संकट मोचन मिश्रा।

श्रोता, आपने अभी कार्यक्रम सुगम संगीत सुना। हमारे आज के कलाकार थे संकट मोचन मिश्रा, इनके स्वर में आपने कुछ भजन सुना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो

0: नमस्कार, पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता

0: ऐसा नहीं है, ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: टू द अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक

0: ने पहली जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में एनडीए की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। वजीर आजम वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस सूरत हाल का मुल्क के अवाम पर कम से कम असर पड़े। वजीर आजम ने मगरबी एशिया के बहरान के असरात से निमटने के लिए अपनी सात नुकाती अपील को एक बार फिर दोहराया। इसमें ईंधन की खपत में कमी, जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह देना, एक साल के लिए गैर मुल्की सफर से इज्तिनाब करना और स्वदेशी मसनूआत को इख्तियार करना शामिल है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर यह भी कहा कि वो खाने के तेल की खपत में कमी करें, कुदरती काश्तकारी की जानिब पेशरफ्त करें और सोने की गैर जरूरी खरीद से गुरेज करें।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है। साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज, ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाजह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम और दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज्म को जाहिर करती है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत

0: की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वुजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि जर मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिरखा मकदार में मौजूद हैं। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: इस मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि ये कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्रा वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुत्तला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वुजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमनो कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: مغربی بنگال حکومت کے 5 وزیروں میں آج مختلف قلمدان تقسیم کیے.

0: गए। इन वुजरा ने 9 मई को वजीर आला शुभेंदु अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर ज़मीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद ज़रूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनाहगाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज से मुतालिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जांच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल कौंसिलों और नगर पंचायतों की हदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। ICC की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोजा बैन अक्वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होकर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सरफहरिस्त एक रोजा बैन अक्वामी टीम है और गुज़श्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैन अक्वामी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाजे को इस दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जहां इसने हमारे जीवन

0: में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481 2371 7117 1 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक बस, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती हैं घरों में जो होती हैं, वो दो तरह से लगती हैं मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जो चलता है उसमें हीट जनरेट होती है। चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: अप्रैल मई के महीने में
2: जी आग लगी, और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
2: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है, किस तरह से आग को पाया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं, लेकिन फायर ग्रिड पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे, किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग, जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है, तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जल

0: ले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है, तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं। तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
2: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को वो नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपने ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
3: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं, तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसमें सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पर देना है, ना कि सबके 60 एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं, तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
3: देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
0: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का

0: रख रखाव आग के लिए बचाव का रख रखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रख रखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है AC में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रख रखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत ज़रूरी है। और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहाँ रहते हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है पर आप कहीं भी वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहाँ जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत ज़रूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए। और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विसेज, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं AC में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी। उस
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत।
2: नहीं लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों

0: जी छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्री में नहीं होता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
2: जी।
1: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
2: जी।
1: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी,
2: जिस चीजें फायर ब्रिगेड पहुंचे उतने देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
2: जी, विजय जी नमस्कार।
3: दीदी नमस्ते।
2: नमस्कार सवाल।
3: हाँ सर नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील शिव जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
2: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए, और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते है जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, वो फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
2: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
4: हाँ ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर

0: क्या करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा प्रश्न।
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा, तो आप अपने गाँव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।

0: हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया जाए?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101
1: 101
0: ही
1: या
0: होता
1: एक सौ
0: है। आप
1: बारह
0: अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप
1: पहुंच सकते
0: संपर्क
1: हैं।
0: कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि
1: जी
2: पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए

0: ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सभी राज्यों को दिया गया है। तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए, उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी हो,
0: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
0: या इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल
1: गाड़ी से
0: जाना
1: बाहर
0: है,
1: निकलना
0: और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो
1: जी,
0: वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते है आपको दूर अपने आप को करना है, और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके
1: जी
0: उसमें उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है, कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद हैं जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद
2: जी
1: नमस्कार, स्वागत
2: हाँ
1: है
2: जी
1: आपका।
2: नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी जल्दी से
2: मेरा
1: सवाल पूछिए।
2: निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो
1: जी
2: कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिसेज वगैरह हैं या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप
0: जी
2: प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आइडियल आप टेम्परेचर बताएं
1: जी
2: जैसे
1: जी हम
2: प्लीज।
1: जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
3: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCV LCV LCV का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है, तभी
1: जाएगा। प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत
3: समय
1: दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सोमवार्षीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है डॉक्टर नीरा चौधरी का ख्याल गायन राग रागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं भव भय भवानी, जो तीन ताल में है। तबले पर संगति है शांतनु राय की और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अनुदीप दे।

अभी आपने डॉक्टर नीरा चौधरी का ख्याल गायन सुना। तबले पर संगति थी शांतनु राय की और हारमोनियम पर थे अनुदीप दे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवार स्तरीय संगीत सभा अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनें फिल्म संगीत। अमित कुमार और लता मंगेशकर को आइए सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी में।

0: फिल्म शक्ति से अभी आपने ये गाना सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लेते एक छोटा सा अंतरा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: किशोर कुमार को आइए सुने फिल्म ब्लैकमेल में राजेंद्र कृष्ण के का संगीत और कल्याण जी आनंद जी की, माफ कीजिएगा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण का के बोल हैं। आइए सुने फिल्म ब्लैकमेल का ये खूबसूरत सा गाना।

ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म लव मैरिज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। इसी गाने के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और

देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources stemming the West Asia conflict, one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that the situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move